हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और ठीक 36 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। भोर की इस मंगल बेला में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने को है। बस कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव यथा समय नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए समूह स्वर में मातृवंदना।

समूह स्वर में मातृवंदना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं गणपति भजन, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, शब्द रचना चंद्रशेखर पांडे की, संगीत निर्देशन शंभू सेन का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आपको जानकारी देंगे आज की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर के बाद 6:30 से आप सुन सकेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होगा वाणी जयराम का। 6:40 से सुनिएगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 6:55 से दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संस्कृत में समाचार। सुबह 7 से सुनिएगा दैनिक वैचारिक कार्यक्रम सुबह सुबह। 7:05 से सुनिएगा कृषि संकेत के अंतर्गत, विषय भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं पर जानकारी, विशेषज्ञ होंगे विपिन जैन। 7:10 से सुनिएगा भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 7:20 से कार्यक्रम मन चाहे गीत। 7:45 से कार्यक्रम संगीत सरिता। सुबह 8 से दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का अनुप्रसारण आप सुन सकेंगे। 8:15 से सुनिएगा कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत बुंदेली लोकगीत। 8:45 से कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सुबह 9 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से आप सुन सकेंगे। 10 से भोपाल केंद्र से सुनिएगा जिले की चिट्ठी कार्यक्रम और 10:05 से आकाशवाणी के सागर केंद्र से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। 10:10 से सुनिएगा फोन करें गीत सुने कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। सुबह 11 से NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 11:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। दोपहर 2 से भोपाल केंद्र से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के अंतर्गत कार्यक्रम। 2:10 से भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण। 2:15 से दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार का अनुप्रसारण। 2:30 से मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

शाम 5 बजे से भोपाल केंद्र से सुनिएगा इस घंटे की सुर्खियां। 5:02 से सुनिएगा भोपाल केंद्र से कार्यक्रम युववाणी। आज शाम 5:30 से संघ

बजकर 30 मिनट से भोपाल केंद्र से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आज रात 8 बजे से सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत और 8 बजकर 20 मिनट से कार्यक्रम संगीत सरिता। रात 8 बजकर 45 मिनट से समय होगा समाचार संध्या के अनुप्रसारण का, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। रात 9 बजे से सुनिएगा कार्यक्रम मन चाहे गीत। 9 बजकर 30 मिनट से मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। रात 11 बजे से सुनिएगा दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11 बजकर 5 मिनट से अंग्रेजी में समाचार का अनुप्रसारण। आज की प्रसारण सभा का समापन हम रात 11 बजकर 10 मिनट पर करेंगे और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। सुनिए श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर वाणी जयराम।

मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित्र सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य अतिशय प्रेरित हुए, बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती उन्हें श्री राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर था वाणी जयराम का। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना परिवार फिल्म से हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। सलिल चौधरी ने संगीत निर्देशन किया था। कार्यक्रम में आप सुनिए नजराना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत निर्देशन रवि का।

जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

0: बाबू काले तो खुशी का राग दुनिया है भगमाओ
1: हे बाबू ये है जमाना तेरा हे बाबू ये है जमाना तेरा हे बाबू ये है जमाना तेरा हे बाबू ये है जमाना तेरा हे

0: नहीं है खाली दुनिया, नहीं है दर्द वाली गरज कीमत वाली दुनिया। फिर भी देखो तो बाबू प्यार से नहीं है खाली दुनिया।
1: सुन प्यारे,
0: कहो प्यारे मत वाले, काले तू खुशी का राग दुनिया है भागम भाग। हे बापू ये है जमाना तेरा, हे बापू ये है जमाना तेरा, हे बापू
1: काले तू खुशी का राग दुनिया है भागम भाग।

0: मन में तेरा गुलजार है ये तेरी ही बहार कली सुन ले
1: ओ नहीं कुछ मुश्किल इतना लगा के दिल सुन ले
0: तेरा गुलजार है ये तेरी ही बहार कली सुन ले
1: सुन प्यारे कहो प्यारे मत वाले काले तो खुशी का राग तो नहीं है भाग भाग
2: हे बाबू ये है जमाना तेरा है केसू ये है जमाना तेरा है केसू
1: काले तो खुशी का राग दुनिया है भाग भाग
2: हे फग्गू ये है जमाना तेरा हे फग्गू ये है जमाना तेरा हे
3: भागम भाग। इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी, संगीत ओपी नैयर का था। कार्यक्रम में एक और गीत शामिल कर रहे हैं, फिल्म का नाम है बहारें फिर भी आएंगी। आशा भोसले की आवाज़ है, शिवान रिजवी की शब्द रचना है और संगीत ओपी नैयर का है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ता। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शांति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्री मोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय UPI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्याम परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणां आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्तांग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेन्धन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उतवा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आंतरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेन्धनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजन माध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोत् इति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरन्तरं गहनं भवति। डॉक्टर जयशंकर ह्यः बहरीन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः समापनम् अकरोत्। यात्रावधौ डॉक्टर जयशंकर

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजे हैं। श्रोताओं, बराबरी ही क्यों करनी है, आगे भी तो निकल सकते हैं। ये सुनने में एक साधारण सा वाक्य है, लेकिन यदि मन थोड़ी देर इसके साथ ठहर जाए तो ये केवल सफलता की नहीं बल्कि जीवन को देखने की एक अलग दृष्टि की बात करता है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अदिति और आप सुन रहे हैं दैनिक वैचारिक कार्यक्रम सुबह सुबह। श्रोताओं, जिस वाक्य के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बराबरी ही क्यों करनी है, आगे भी तो निकल सकते हैं, जीवन में तुलना का भाव जो होता है वो नया नहीं है। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि किसने कितना अच्छा किया, कौन किससे आगे है और कौन किससे पीछे। धीरे धीरे ये आदत इतनी सहज हो जाती है कि हम अपने कदमों की दिशा भी कई बार दूसरों को देखकर तय करने लगते हैं। फिर हमारा ध्यान अपने विकास पर कम और किसी की बराबरी करने पर अधिक रहने लगता है। यही से सोच में एक बदलाव आने लगता है। जब उद्देश्य केवल बराबरी रह जाता है, तब कई बार व्यक्ति ऐसे व्यवहार भी अपनाने लगता है जिनकी वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं होती। किसी की बात का महत्व कम कर देना, किसी की उपलब्धि को हल्के में लेना, किसी के प्रयासों की सराहना ना कर पाना, या ऐसे शब्द कह देना जो सामने वाले के मन को दुख पहुंचा दे, ये सब केवल इसलिए कि कहीं कोई हमसे आगे दिखाई ना दे। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं श्रोताओं, जिनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। उन्हें किसी के आगे बढ़ने से कोई परेशानी नहीं होती। वो जानते हैं कि दूसरे का अच्छा होना उनके हिस्से का अच्छा कम नहीं करता। किसी की सफलता देखकर उनके मन में सबसे पहले सम्मान का भाव आता है। यदि कुछ सीखने जैसा दिखता है तो वे उससे सीख लेते हैं और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन को ध्यान से देखें तो हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। सबकी परिस्थितियां अलग हैं, अनुभव अलग हैं, क्षमताएं अलग हैं और सपने भी अलग हैं। इसलिए दो लोगों की उपलब्धियों की तुलना करना कभी पूरी तरह उचित हो ही नहीं सकता। किसी के लिए एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकता है, तो किसी दूसरे के लिए वही बात बिल्कुल सामान्य हो सकती है। इसलिए किसी की सफलता बड़ी या छोटी नहीं होती, वो उसकी अपनी यात्रा के अनुसार महत्वपूर्ण होती है। जब ये बात समझ में आने लगती है, तब दूसरों की उपलब्धियां बोझ नहीं लगती। वो इस बात का प्रमाण बन जाती हैं कि आगे बढ़ना संभव है। तब तुलना की जगह प्रेरणा जन्म लेने लगती है। प्रश्न ये नहीं रह जाता कि हम किसके बराबर हैं, प्रश्न ये हो जाता है कि हम अपनी क्षमता के साथ क्या न्याय कर रहे हैं, क्या हम अपने व्यक्तित्व को पहले से बेहतर बना रहे हैं और क्या हम अपने भीतर मौजूद उन गुणों को पहचान पा रहे हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बना

सकते हैं, इसीलिए बराबरी ही क्यों करनी है, आगे भी तो निकल सकते हैं ना। और जीवन की सबसे सुंदर प्रगति शायद वही है जहां हम किसी और से आगे निकलने की नहीं, अपने ही कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। विचार करिएगा श्रोताओं, इन्हीं विचारों के साथ कार्यक्रम सुबह सुबह में बस इतना ही।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक वैचारिक कार्यक्रम सुबह सुबह। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कृषि संकेत। विषय है भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं। विशेषज्ञ हैं विपिन जैन।
1: जो अपना भारत है किसी प्रधान देश है और जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो किसी पे ही आधारित है। बिना खेती के भारत अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। तो किसी क्षेत्र में जो है अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि
2: जी,
1: जो किसानों को सीधा लाभ पहुंचाती है, किसान भाइयों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में पहुँचते हैं, जिसके द्वारा किसान भाइयों को कुछ आर्थिक मदद मिलती है। इसके बाद लगातार जो चल रही है फसल बीमा योजना, ये फसल के लिए मुख्य आधार है। यदि किसान भाई अपना फसल बीमा करवा लेते हैं तो इसके द्वारा भी एक सुरक्षा की गारंटी किसान भाइयों को मिलती है। इसके बाद MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य है, किसान भाइयों को MSP के द्वारा मिलता है, उसके लिए सरकार प्रयास करती है। इसके बाद बात आती है किसान क्रेडिट कार्ड की। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा साधन है, क्योंकि पहले जो किसान भाई के पास पूंजी नहीं रहती थी तो वो व्यापारिया आड़तिया साहूकारों से लेते थे, जिससे बहुत ज्यादा महंगे रेटों में उनके लिए ऋण प्राप्त होता था। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा न्यूनतम रेट पे उनको पैसा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद नई तकनीक एवं नवाचार की बात करें तो पीएम कुसुम योजना है। इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिला है। साथ ही साथ आप देखें कि जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का या और भी उर्वरकों का प्रयोग होता है तो पहले किसान भाई छोटे पंपों से करते थे, लेकिन अब जो नमो ड्रोन दीदी योजना निकली है, आप देखेंगे कि ड्रोन के द्वारा आप उर्वरकों का और अन्य पेस्टिसाइड खरपतवार नाशक के लिए जो काम घंटों में होते थे वो मिनटों में ड्रोन के द्वारा छिड़काव होने लगा है, कम समय में। और बहुत अधिक क्षेत्र में आप देखेंगे व्यापक रूप से एक समान रूप से ड्रोन के द्वारा आप छिड़काव हो रहा है। और साथ में देखेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की कौन सा पोषक तत्व कितना है, ये जानकारी मिल जाती है। और अब एक और नाम जुड़ गया है ई-नाम। इसमें जो मंडियों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, इसमें अधिक से अधिक व्यापारी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। और साथ में आप देखेंगे किसी मैपर में लगातार जो शासन की योजनाएं चल रही हैं, कहां कितने प्रदर्शन दिए गए हैं, किस किसान को दिया है, वो प्रदर्शन लगाया गया है तो उसमें शुरुआत बुवाई से लेके कटाई तक उसकी जो ग्रोथ है वो डिजिटल रूप से सैटेलाइट द्वारा ली जाती है और उसका पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड भविष्य के लिए संधारित होता है कि जो प्रदर्शन लगाए गए थे तो उसका क्या परिणाम है। ये नई नई टेक्नोलॉजी और बहुत सारी योजनाओं के द्वारा लगातार 12 वर्षों में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत। विषय था

0: अब भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं, विशेषज्ञ थे विपिन जैन। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर के बाद यानी 7:10 से सुनिएगा भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और 5वें शुक्रवार को रात्रि 8:30 से।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सम्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में करेंगे भूमि पूजन। प्रदेश में मॉनसूनी बारिश का सिलसिला जारी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए दोनों देशों के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और समुद्री संबंधों को रेखांकित किया। श्री मोदी ने द्विपक्षीय साझेदारी के लिए गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस विजन के 5 प्रमुख स्तंभ सभ्यतागत जुड़ाव, साझा विकास, सुरक्षा, समुद्री समृद्धि और ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दोनों का अनुभव वैश्विक स्तर पर प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने इंडोनेशिया के एमास 2045 विजन और भारत के विकसित भारत 2047 संकल्प को एक दूसरे का पूरक बताया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लॉन्च, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की और ब्रिक्स में इंडोनेशिया की सदस्यता का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ और भारत प्रशांत क्षेत्र को एक नई दिशा देंगे। श्री मोदी ने कहा,
1: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
0: देश में सहकारी संघवाद को मजबूत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की गरिमामय उपस्थिति में दशकों पुराने नर्मदा जल विवाद का कल सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया। नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता सरदार सरोवर परियोजना की निर्माण लागत साझा करने से जुड़े लंबित भुगतानों का वन टाइम सेटलमेंट करता है। गृह मंत्री श्री शाह ने कहा, इसे जल सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण राज्यों में आपसी समझ पड़ी है जिससे राष्ट्रीय नुकसान को रोका जा सका है। इससे पहले अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल रक्षा, रेल और कृषि मंत्रियों से भी मुलाकात कर राज्य के विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी लियोगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की प्रमुख निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई द्वारा 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस नए संयंत्र में 272 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में यहां प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरणों का उत्पादन होगा जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि लियोगोंग वर्ष 2008 से पीथमपुर में कार्यरत है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह विस्तार मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक निवेश और विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेकिंग बाल समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर SI और सूबेदार के पदों पर भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। विभाग द्वारा कुल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें से योग्यता के आधार पर 436 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चुन लिया गया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में संजय परमार ने टॉप कर पहला स्थान हासिल किया है। इस बड़ी कामयाबी और भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने पर DGP कैलाश मकवाणा ने खुशी जताई है। प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई जगहों पर खूब पानी बरस रहा है तो कुछ स्थानों में पानी की कमी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, जबलपुर और सागर सहित अधिकांश संभागों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। झाबुआ जिले में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। उधर मंडा जिले में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए कलेक्टर राहुल धोटे ने नर्मदा घाटों और शहर के जलभराव वाले इलाकों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घंटे सक्रिय रहने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं गुना जिले में 1 जून से कल तक कुल 232.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। आज बड़वानी, धार, गुना सागर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। कल रात नॉटिंगहम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया।

कि शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मैच बारिश की वजह से बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। सीरीज के आखिरी 2 मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड का सामना करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस सांची के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। खंडवा जिले में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत मैराथन और साइबर रन का आयोजन कर नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षा ऐप के प्रति जागरूक किया गया। आगर मालवा जिले में आगामी सिंहस्त महापर्व को देखते हुए कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग को अधिक से अधिक किसानों को फूलों की खेती के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। डिंडौरी जिले में युवाओं और नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आज 1 दिवसीय तेजस कार्यशाला का आयोजन कर स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग पर मार्गदर्शन दिया गया। इंदौर जिले में आयोजित रोजगार मेले में 12 प्रतिष्ठित निजी कंपनियों द्वारा 300 युवाओं को विभिन्न पदों पर नौकरी के लिए चयनित कर रोजगार दिया गया। मंडला जिले में एमएसएमई उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय कंपोजिट वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी योजनाओं और डिजिटल कॉमर्स पर लाइव सेवाएं मिलेंगी। भोपाल जिले में नगर निगम ने जिला प्रशासन के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध अतिक्रमण हटाए और 5 जर्जर मकानों को जमींदोज किया। सिंगरौली जिले में बलिया नाला में कोयला युक्त दूषित पानी बहाने पर कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खदान प्रबंधन पर 63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। गुना जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द खरीदी के लिए 4 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां नोडल अधिकारियों की निगरानी में पारदर्शी व्यवस्था रहेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दैनिक सूचना परक कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:20 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज के इस कार्यक्रम का सफर आप तय करेंगे आपकी रेडियो साथी अदिति के साथ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहला गीत शामिल कर रहे हैं, फिल्म का नाम है मन की आंखें। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, साहिर की शब्द रचना है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पहले सुन लेते हैं गीत, गीत के उस पार जानेंगे फरमाइशकर्ताओं के नाम।
2: दिल कहे रुक जा रे रुक जा,

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मन की आंखें, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी और सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता। व्हाट्सएप पर टेक्स्ट के द्वारा आप सभी ने फरमाइशें भेजी। नंदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित और गर्वी। राजस्थान से जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुखमनी, साहिल और भारती बघेल। महाराष्ट्र से छत्रपति संभाजी नगर से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना

बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव, हरियाणा चौटाला से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा, छत्तीसगढ़ से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद, फैजान मोहम्मद, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल लाड़ो, नानक चंद, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू और भाविक सिक्का, बिहार समस्तीपुर से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह, खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप, दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। नक्श लायलपुरी का लिखा हुआ है, जयदेव का संगीत है, फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम था तुम्हारे लिए। कार्यक्रम में अब अगला गीत। आप सभी की फरमाइश पर व्हाट्सएप पर आप सभी ने टेक्स्ट भेजे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, निवान, सौरभ और शियाना। औरंगाबाद से सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, अंशुमन, ओवी। छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा। कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी। मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान, जीवियम। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में गीत, SH बिहारी का लिखा हुआ, संगीत निर्देशन OP नैयर का, फिल्म का नाम सावन की घटा।

सावन की घटा इस फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम मन चाहे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से, और समय को ध्यान में रखते हुए एक और फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं। कार्यक्रम में आप सभी ने व्हाट्सएप के माध्यम से टेक्स्ट भेजे हैं और फरमाइश की है। अभिषेक कुशवाहा, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से। करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर और राधा। लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे, सुशीला, मेघा, नेहा और येशु। महाराष्ट्र से आरती, प्रभाकर जोंधले। मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा, गुलिस्ता, नंदिनी और अंजलि। महाराष्ट्र से शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल, शुभ प्रसाद, अर्णव और दुर्गेश्वरी। हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में गीत। प्रेम धवन ने इस गीत को लिखा है, संगीत रवि का है, फिल्म का नाम है एक फूल दो माली।

श्रोताओं, इसी फरमाइशी फिल्मी गीत के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत को अब हम संपन्न कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया आपकी रेडियो साथी अदिति के साथ। कार्यक्रम से अब दीजिए इजाजत।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:45 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम के अंतर्गत पहला गैर फिल्मी गीत सुनिए। एल्बम का नाम है कभी ऐसा लगता है। गायक कलाकार और संगीतकार हैं लकी अली। शब्द रचना है समीर की।

श्रोताओं, ये गैर फिल्मी गीत अभी आपने सुना लकी अली की आवाज़ में, और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ में गैर फिल्मी गीत। प्रवीण भारद्वाज ने इस गीत को लिखा है, संगीत निर्देशन हरदीप संधू और प्रेम हंस का है। एल्बम का नाम है तेरा मेरा प्यार।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में। एल्बम का नाम था तेरा मेरा प्यार। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं एल्बम पहली दफा से आतिफ असलम की आवाज में गीत। इस गीत को शकील सोहेल ने लिखा है, संगीत निर्देशन सिराज उप्पल का है।

0: श्रोताओं, ये गीत जो अभी आप सुन रहे थे वो एल्बम पहली दफा से था आतिफ असलम की आवाज़ में। शकील सोहेल ने इस गीत को लिखा था और संगीत निर्देशन शिराज उप्पल का था। और इसी गैर फिल्मी गीत के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता को अब हम कर रहे हैं संपन्न। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है, बस कुछ ही पलों के इंतजार के बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का अनुप्रसारण।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
4: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने ही लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है।
5: उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक पूर्वी राजस्थान गुजरात कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश, आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
5: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की, इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की, केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे कुछ बुंदेली लोकगीत और लोक संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए देवी गीत देवी प्रसाद रैकवार की आवाज़ में।
1: बसन ने पाही रानगर माता, बनन ने पाही देहात,

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत अब सुनिए चौकड़िया हल्लन भाई और साथियों की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे केशव दास सुलेरे की आवाज़ में ये लोकगीत। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं बद्री प्रसाद खरे की आवाज़ में किसान गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में वर्षा गीत, और इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक संगीत को हम संपन्न कर रहे हैं। दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:45 हुए हैं श्रोताओं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है बॉडीगार्ड। राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में शबीर अहमद ने इस गीत को लिखा है, संगीत हिमेश रेशमिया का है।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: भाई, एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
2: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
1: मतलब
2: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
3: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था नमस्ते लंदन। हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत था। इस गीत को जावेद अख्तर ने लिखा था और संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का था।

एक फिल्मी गीत और संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें, आज सुबह 10 बजे से आप सुन सकेंगे भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी और 10:05 से आकाशवाणी के सागर केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को है, बस कुछ ही पलों में सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। करते हैं थोड़ी सी प्रतीक्षा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक पाठशाला। इस फिल्म का गाना तुलसी कुमार, आकांक्षा लामा और हनीफ शेख की आवाजों में, गीत और संगीत हनीफ शेख का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम जारी है चित्रलोक। अब आइए सुनते हैं रॉय फिल्म का गाना, मीत ब्रदर्स अनजान फिएट और कनिका कपूर की आवाजों में, कुमार के बोल, संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है सोना महापात्रा की आवाज में फुकरे फिल्म का गाना, मुन्ना धीमान का लिखा हुआ गाना, राम संपत का संगीत।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं बैंड बाजा बारात। इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना विशाल मिश्रा की आवाज में, राजशेखर के बोल, विशाल मिश्रा का संगीत, फिल्म का नाम एनिमल।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना। सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें, मयूर पुरी के बोल, संगीत ए आर रहमान का, फिल्म का नाम ब्लू।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। साथियों, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कॉमेडी के बादशाह जगदीप पर केंद्रित कार्यक्रम।
1: मेरा नाम भी दूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा हमने जनाब। हम जानते हैं कि आपका नाम सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। हुजूर, हमने तो पहले ही कहा कि कॉमेडी की दुनिया के असली सूरमा जनाब सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी साहब के बारे में आज हम बात करेंगे। जी दोस्तों, यही है जगदीप साहब का असली और

0: 29 मार्च 1939 को दतिया में जन्म हुआ जगदीप साहब का। पर्दे पर आकर इन्होंने अपना नाम जगदीप रख लिया और दर्शकों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जगदीप साहब की अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसी रही, कैसे दुख दर्द से भरी जिंदगी के बीच भी जिंदा दिली से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए, बताएंगे इस गाने के बाद।
1: इन

0: कम उम्र थी जगदीप साहब की जबकि देश का विभाजन हुआ। उस समय तक इनके पिता का भी देहांत हो चुका था। देश के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लिहाजा माँ बेटे बंबई यानी आज की मुंबई आ गए। बहुत छोटी उम्र यानी 6 या 7 साल की उम्र थी। सर पर सिर्फ माँ का साया, भूख, अभाव और गरीबी से जूझता बचपन। उस जद्दोजहद भरी जिंदगी में जगदीप साहब की माँ को एक यतीम खाने में काम मिल गया, जहाँ वो खाना बनाया करती थी। इसी तरह एक तंग बस्ती में जिंदगी बसर हो रही थी। माँ की कोशिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख ले, सो जगदीप साहब को वो स्कूल भी भेजा करती थी।
1: तुम तो बहुत विद्वान हो, इतनी विद्या कहाँ से सीखी?
2: चींच पोकली दादर लोअर पर्ल यूनिवर्सिटी।
0: इस कम उम्र में भी बालक जगदीप को ये समझ में आ रहा था कि जिंदगी का हर एक दिन गुजारना उसके और उसकी माँ के लिए कितना मुश्किल है। बालक जगदीप बस्ती के दूसरे बच्चों को काम करते देखता तो सोचता कि मैं काम क्यों नहीं कर सकता हूँ। माँ नहीं चाहती थी कि बेटा पढ़ाई छोड़े, लेकिन आखिर जिंदगी की जरूरतों के आगे माँ को भी बालक जगदीप की जिद के आगे झुकना पड़ा। खेलने कूदने की उम्र में बालक जगदीप ने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए, कभी क्लीनर, कभी सामान ढोना, कभी पतंग बनाकर बेचा करना। जिन पतंगों को जगदीप बना बना कर बेचा करते थे, वो पतंगें आसमान में परवाज भरती थीं। बस उन्हें एक डोर की जरूरत होती थी। जगदीप को क्या पता था कि वो भी एक दिन आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरने

0: चले रे।
1: और आखिर वो दिन आ ही गया जब पतंग की डोर की तरह जगदीप की किस्मत की डोर बनकर एक शख्स उसी सड़क पर आया जहां बालक जगदीप काम किया करता था। उसे 5 से 10 साल तक के बच्चों की तलाश थी। जगदीप के पूछने पर उसने बताया कि एक फिल्म में एक सीन में उसे कुछ बच्चों की जरूरत है जहां सिर्फ बैठे रहना है और इसके लिए हर एक बच्चे को रोज के 3 रुपए मिलेंगे। बस फिर क्या था, उस सड़क के बहुत से बच्चों की टोली चल दी शूटिंग के लिए। इसमें बालक जगदीप भी थे। शूटिंग में एक दिन जगदीप को एक डायलॉग बोलने के लिए कहा गया। चूंकि जबान इनकी बड़ी साफ थी, उर्दू बहुत अच्छी बोल लेते थे, लिहाजा डायलॉग बोलने के उन्हें 3 रुपए अलग से मिले। ये काम जगदीप को बहुत भाया। वो फिल्म थी अफसाना, निर्देशक थे बीआर चोपड़ा और इनके सहायक निर्देशक थे यश चोपड़ा। बस यहीं से शुरू हुआ बालक जगदीप का फिल्मी सफर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट।
2: क्या नाम है तेरा?
3: मुन्ना।
2: और अपना नाम है लक्ष्मण जी, राम जी, हनुमान जी, पोस्टर चिपकाने वाला एंड कंपनी, समझा?
1: फिल्म दर फिल्म जगदीप काम कर रहे थे, प्रतिभा निखर रही थी, फिल्म सर्किट में लोग पहचानने भी लगे थे। तभी फणी मजूमदार की फिल्म धोबी डॉक्टर में नायक किशोर कुमार के बचपन की भूमिका निभाने का जगदीप को मौका मिला और इनके अपोजिट थी बालिका आशा पारेख। धोबी डॉक्टर में जगदीप का काम देखकर फिल्मकार बिमल रॉय ने जगदीप को फिल्म 2 बीघा जमीन में काम दे दिया।
4: कन्हैया यार तू पूरा चपा गंजू, काम से जा रहा तूने टोक दिया।
3: कहां जा रहे थे?
4: बगदाद
3: है?
4: अबे यार बगदाद सिनेमा, रंजन है उसमें,
3: वाह वाह क्या तलवार चलाता है, सेट सेट सड़ा आ क्या जान से मार देता है।
4: हाँ चल, चलता है
3: ना बाबा?
4: अबे चल मैं दिखाऊंगा, आज जेब गरम है अपनी, सालिम 2 रुपए कमाए। हाँ
3: 2 रुपए इतने कहाँ से मिले?
4: अरे जूता पॉलिश करके, आज एक असली साहबा फंसा, ऐसा जूता पॉलिश किया के बेटा कायल हो गया, हैंडशेक करके अंग्रेजी में बोला वेरी गुड फर्स्ट क्लास और फटाक से 2 रुपए हाथ पर धर दिए।
1: अब तक जगदीप ने जवानी में कदम रख दिया था और फिर हीरो भी बन गए। फिल्म आई भाभी, आज भी लोग याद करते हैं। इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी नंदा।

0: जगदीप ने हर तरह की फिल्मों में काम किया, हर तरह के किरदार निभाए, लेकिन दर्शकों ने इनके मजाहिया अवतार को बेहद सराहा। फिर जब फिल्म शोले आई तो सूरमा भोपाली ने जगदीप को और जगदीप ने सूरमा भोपाली को तो मानो अमर ही कर दिया।
1: अरे कोशिश ये सी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना, एक को धीमी है ना पटखनी के वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग जो खींची है के जाते किधर वहां, और कस के दो दिए लफाड़े के चलो छाने, बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने।
2: वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
1: हाँ हाँ,
2: मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।
1: अरे बहुत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
3: फिर क्या हुआ?
1: अरे फिर होना क्या था, मैं तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मैंने फिन फिनाई तो जरा सुधाई कर दी, जटा दट बहुत मारा।
3: फिर क्या हुआ?
1: बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा।
3: क्या कहा?
1: हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे।
0: जगदीप साहब के बेटे जावेद और नावेद भी फिल्मों और टीवी पर सक्रिय हैं। जावेद तो जगदीप साहब की तरह ही हरफन मौला कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे डांसर माने जाते हैं। जावेद जाफरी।
4: ए, बोल बे,

जगदीप साहब ने एक बहुत ही लंबी पारी खेली अपने फिल्मी करियर में और अपने सभी सहकर्मियों फिल्मकारों के चहेते बने रहे और दर्शकों के तो आज भी चहेते हैं।

0: देखो हाँ, अब बहुत हो गया। अब तो आप यहाँ से रवान की डाल तो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे?
1: जी हाँ बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो ये था बेहतरीन अदाकार जगदीप पर केंद्रित प्रोग्राम आज के फनकार।
2: अरे हम पंछी एक डाल के
1: अपने हिस्से का किरदार निभाकर दुनिया की डाल से उड़ गया ये पंछी। जगदीप साहब भले ही चले गए हों, लेकिन उनका निभाया हर एक किरदार हमारे आसपास हमेशा रहेगा।

0: गीत गाल के।
1: शोध आलेख और स्वर अमरकांत का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब नमस्ते।
2: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह।

0: दमोह जिले के लिए बीता महीना विकास, संस्कृति, कृषि और जन स्वास्थ्य गतिविधियों पर आधारित समसामयिक रूप से समृद्ध रहा। पिछले दिनों हुई वर्षा के बाद गर्मी के तपन और तेज धूप से अब जिले वासियों को राहत मिली है। बारिश की बूंदों और रिमझिम बारिश ने नदियां, बांध, कुओं में न केवल जल भर दिया है बल्कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आने लगी है। पर्यटक प्रकृति की सुंदरता को देखने और लुत्फ उठाने सिंग्रामपुर, सिलापरी, मटककुंड, भदभदा और राजनगर जलाशय सहित जिले की प्रसिद्ध लघु वृहद सिंचाई परियोजनाओं की तरफ रुख कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपसे ने आगामी समय में जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। जिले में सोयाबीन की बोनी के लिए 10 से 12 जुलाई तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। जिन खेतों में पानी भर गया है वहां से जल निकासी कर दें ताकि खेत जल्दी तैयार हो सके। जिले में खरीफ सीजन की बोनी शुरू हो चुकी है। कृषि विभाग ने इस साल जिले में 3,950 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी की है जो पिछले वर्ष से लगभग 1,000 हेक्टेयर से अधिक है। इसमें धान 80,500 हेक्टेयर, मक्का 40,000 हेक्टेयर, उड़द 60,000 हेक्टेयर और सोयाबीन 1.25 लाख हेक्टेयर में बोई जानी है। खरीफ सीजन के बीच किसानों को राहत देते हुए जिले में 2600 मीट्रिक टन डीएपी की खेप पहुंच गई है। जिले में आई एफको की डीएपी खेप में से 2000 एमटी विपणन संघ, 1200 मीट्रिक टन सहकारी समितियां और 800 एमटी मार्कफेड गोदाम में भेजे गए हैं। वर्तमान में समितियों में 1200 मीट्रिक टन पहुँच चुका है। इसके अलावा 1000 मेट्रिक टन डीएपी मिलने की संभावना है। वहीं 100 एमटी डीएपी पहले से स्टॉक में है। कुल मिलाकर समितियों के पास करीब 2300 मेट्रिक टन डीएपी उपलब्ध होगा। वहीं जिले में करीब 2000 मेट्रिक टन यूरिया की भी स्टॉक मौजूद है। दमोह जिले में साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले दिनों सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया ने भी भाग लिया। मैराथन के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़े खतरों के प्रति आमजन को जागरूक करते हुए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले के 256 श्रद्धालु पिछले दिनों हरिद्वार, ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान दमोह रेलवे स्टेशन पर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्म स्वराज्य मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी और दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया ने तीर्थयात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी श्रद्धालुओं को मंगलमय तथा सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। कुछ दिनों पहले दमोह नगर के प्रसिद्ध बेलाताल जलाशय में जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन हुआ जिसमें राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया और दमोह विधायक जयंत मलैया ने भाग लिया। इसी दौरान मंत्री ने जल संरक्षण और संवर्धन की आमजन को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण जन जन का अभियान बन गया है। आपको बता दें कि सिंचाई परियोजनाओं से न केवल दमोह की तस्वीर बदली है बल्कि किसानों की आय भी बढ़ी है। प्रदेश भर में 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे हुए हैं। 10,514 करोड़ रुपए की लागत से जल संरचनाओं के संरक्षण को नई गति मिली है। दमोह नगर टर्फ हॉकी स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल और विधायक जयंत मलैया सहित गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। राज्य मंत्री पटेल ने सभी नागरिकों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने की अपील की है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल से प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव संबोधन को भी उपस्थित जनों द्वारा देखा और सुना गया। जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिला अस्पताल में बच्चों को दवाई पिलाकर की। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। अभियान के दौरान लक्ष्य पूर्ति के लिए 1339 बूथ बनाए गए थे। दमोह जिले के हटा की धरती पर जन्मे तबला वादक रामेंद्र सिंह सोलंकी का चयन प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार के लिए किया गया है। रामेंद्र सिंह हटा स्थित डाइट में शिक्षक रहे अजय सिंह सोलंकी के सुपुत्र हैं। इन्होंने न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और दक्षिण कोरिया में तबला वादन की प्रस्तुतियां दी हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा।
2: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन।

0: बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आप सभी का स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। मैं हूं मनोज सक्सेना और हमेशा की तरह मुझसे बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं भोपाल के जाने माने डायबिटीज थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चेतावार जी। सर नमस्ते।
1: नमस्कार
0: सर। छोटे छोटे सवालों और उनके जवाबों का जो सिलसिला है हमारे सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों ने सवाल भेजे हैं, पूछा है कि खाली पेट शुगर जो है वो नॉर्मल आ रही है तो क्या वह डायबिटिक हो सकते हैं या हैं?
1: देखिए होता है कि कई बार खाली पेट शुगर नॉर्मल आ रही है, 100 के ऊपर है पर 126 के अंदर है, तो आप बोल सकते हो ये तो नॉर्मल रेंज में है पर वो प्री डायबिटिक रेंज में है। पर कई बार जब आप भरे पेट शुगर कराते हो, 100 ग्राम ग्लूकोज देके OGTT कराते हो, तो भोजन के बाद की शुगर 2 घंटे के बाद 200 के ऊपर आने लगती है। कई बार फास्टिंग नॉर्मल है पर HbA1c आपका 6.5, 6.6, 6.7 आने लगता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एका नहीं बन पाता इन जांचों का, एक बता रही है डायबिटीज है, एक बोल रही नॉर्मल है, एक बोल रही बढ़ा हुआ आ रहा है। तो ऐसा प्रायः होता है शुरुआती दौर में, जब आपको फुल ब्लोन डायबिटीज नहीं हुई है, शुरुआती दौर की डायबिटीज है, तो इन अंगों को इन जांचों को देखकर हमें निर्णय लेना होता है कि हम क्या करेंगे। ऐसी अवस्था में मैं आपका सोनोग्राफी अगर है तो फैटी लिवर भी मेरे लिए बहुत बड़ी एक खबर रहेगी। गर्दन में अगर आपके एकेंथोसिस है, कालापन है, मसे हैं तो वो भी मेरे लिए खबर रहेगी। आप बोलोगे भोजन के 2-3 घंटे के बाद अचानक मुझे थरथराहट, कपकपी, बहुत तेज भूख लगती है और कुछ खा लूं तो अच्छा लगता है, तो ये रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया भी मुझे यही बताएगा कि इस मरीज को डायबिटीज हो गई है या होने वाली है।
0: सर डायबिटीज जिसको हो जाती है उसको शुरुआत में तो एहसास नहीं होता कि मैं डायबिटिक हूँ, उसे लगता है मैं बहुत फिट हूँ, पर जब जांच होती है तो सारी चीजें खुलकर बाहर आती हैं। लोगों का ये भी पूछना है कि हम मिठाई खाएंगे ही नहीं तो क्या हम डायबिटिक हो सकते हैं?
1: देखिए मिठाई खाने का संबंध डायबिटीज से बिल्कुल भी नहीं है।
0: ओके।
1: ऐसा लोग बोलते हैं कि साहब बहुत मीठा खा लिया इन्होंने इसलिए शुगर बढ़ गया, ऐसा नहीं है। जब शुगर होने की अवस्था आती है तब मिठाई मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है उसको आप बहुत अच्छे से पचा नहीं पाते, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा जितनी उत्सर्जित होनी चाहिए शरीर में उतना उत्सर्जन नहीं होता, तो शुगर बढ़ने लगती है, तो आपको लगता है कि ये मीठा ज्यादा खाने से डायबिटीज हो गई। पर हाँ जिनको मधुमेह है उनको संयमित तौर पर कभी कभार मीठा खाना चाहिए। हमेशा अगर आप दिन में 4 बार मिठाई खा लेंगे तो आपके शरीर में वैसे ही इंसुलिन बनाने की क्षमता कम है, तो उसको पचाएंगे कैसे?
0: सर एक सवाल ग्लूकोमीटर को लेकर आया था। ग्लूकोमीटर से लोग अपना ब्लड शुगर चेक करते रहते हैं तो उसका सही तरीका क्या है, कब करना चाहिए और कहां से लेना चाहिए ब्लड?
1: देखिए आपके ग्लूकोमीटर में प्लकर होता है, उसको अपने हिसाब से सेट करिए, इससे आपको निडल भी नहीं दिखेगी। और उंगलियों के साइड में एकदम पोरों के सामने मत करिए, उनके किनारे पे करिए।
0: ओके ओके।
1: जहाँ टिप है फिंगर टिप्स,
0: हाँ,
1: के किनारे पे करिए तो दर्द भी कम होगा, क्योंकि एकदम पोरों के जो एकदम चरम पे आप करते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा संवेदनशील रिसेप्टर्स होते हैं। साइड में करेंगे तो दर्द भी कम होगा। एक ही प्रिंग में ब्लड आना चाहिए, उसमें कोई निचोड़ने या आपको जैसे दूध निकालने के लिए अपन प्रयास करते हैं ना, तो मथने की कोशिश ना हो, तो वो जो आएगा उससे आप अपना ब्लड शुगर देख सकते हैं। ये ब्लड शुगर देखने की अच्छी प्रक्रिया है।
0: ऐसा माना जाता है कि जो ग्लूकोमीटर से जो रीडिंग आती है वह ऊपर नीचे होती है।
1: देखिए ग्लूकोमीटर का जो ब्लड आता है वो कैपिलरी ब्लड आता है जिसमें सबसे शुद्ध खून रहता है।
0: ओके।
1: जब तक अभी ऊतकों ने भोजन नहीं किया है, माने भोजन करने से पहले जो मम्मी थाली सजा के लाती है ना उसकी मांग ही अलग होती है, सुंदरता ही अलग होती है, वो वैसा खून है।
0: ओके।
1: और जो लौटता हुआ खून है जो आप लैब में जांच कराते हो वो लौटता हुआ खून है।
0: ओके।
1: जब ऊतकों ने भोजन कर लिया तो दोनों में 15-20% का तो अंतर आएगा। अच्छा, पर आजकल के ग्लूकोमीटर कैलिब्रेटेड हैं आपके वीनस ब्लड के लिए भी, तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज और वीनस ब्लड के बीच में बहुत डिस्पैरिटी या बहुत ज्यादा अंतर आजकल नहीं आता।
0: श्रोताओं ये कुछ आपके दिए हुए सवाल थे जो हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चेतावार जी से। अब मिलते हैं अगले बुधवार, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना का नमस्कार।

रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 10:10 हो चुके हैं। अब सुनिए फोन इन प्रोग्राम, फोन करें गीत सुने का पुनः प्रसारण।

0: श्रोताओं नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सुब्रता यादव। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। आप कौन और कहां से बोल रहे हैं?
1: सलमान शाहनामल से।
0: सलमान जी, क्या करते हैं आप? कोई समस्या है आपको क्या? आप दिव्यांग हैं तो सलमान जी, ये बताइए कि फिर आपके काम काज कैसे होते हैं?
1: मम्मी करती हैं।
0: क्या उम्र होगी आपकी?
1: 35 साल है मैडम।
0: सलमान जी, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं ये बताइए, कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं?
1: अपने पानी वानी भर लेती हैं, अपनी मापी धो लेती हैं, अपन
0: गीत संगीत तो सुनते होंगे।
1: हाँ, गाना सुनते लेते हैं, आपकी मन चाहे गीत और आप लोग मिलती है सुबह सुबह भी मिलता है।
0: अच्छा, गानों में आपका क्या टेस्ट है? आपको किस दशक के गाने अच्छे लगते हैं? किस तरह के गाने अच्छे लगते हैं?
1: हमें नए वाली गाने अच्छी लगती हैं।
0: तो बताइए आपकी फरमाइश क्या है आज?
1: हमारी फरमाइश है दिल लगा लिया मैंने तुमसे तैयार करके।
0: जी जी बिल्कुल, सुनवाएंगे हम आपको। और गाना सुनवाने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हम अपने कार्यक्रम में एक मुद्दे की बात लेकर आते हैं, और आज के हमारे कार्यक्रम में मुद्दे की बात है कि हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। आप बताइए, आप अपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करते हैं?
1: अच्छी अपन कम खाना खाते हैं, अपन ज्यादा बीमार भी हो जाती है, और दूसरा से भी चीजें ऐसी गर्मी पड़ रही है, खाना पीना कम खाना, चावल है, दाल है जी।
0: हाँ, खाना बहुत जल्दी खराब होता है, तो खाने को सुबह का शाम मत खाएं, और जो भी खाएं अच्छा खाएं, हल्का भोजन करें, गरिष्ठ भोजन से बचें, और मौसमी फल है जो हमारे छाछ है, नींबू पानी है, इनका सेवन करें। चलिए सलमान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम का नाम है फोन करें गीत सुने।
3: मनोज विश्वकर्मा, ग्राम पनारी, तहसील देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
2: मनोज जी, क्या करते हैं आप?
3: मैं फर्नीचर का काम करता हूँ मैडम।
2: तो अभी आपका काम कैसा चल रहा है?
3: काम भर में चल रहा है, अभी काम पर ही थे
2: जी।
3: और इसका समय हमें याद ही था कि आज रिकॉर्डिंग होने वाली है, तो आपको फोन लगा लें।
2: चलिए, बहुत अच्छा किया ये तो आपने हमें कॉल लगा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मनोज जी, हमें ये बताइए कि आप जब काम करते हैं तब क्या साथ में रेडियो चलाते हैं?
3: नहीं मैडम, घर पर जब रहते हैं तो रेडियो पर सुनते हैं।
2: हाँ।
3: और जब कहीं साइट पर काम पड़ा जाते हैं तो अपने News1 AR के माध्यम से सुनते रहते हैं।
2: एक हमारा OTT प्लेटफॉर्म आया है वेव।
3: जी जी हाँ, डाउनलोड किया हुआ है।
2: अरे वाह, चलिए आप तो बहुत जागरूक श्रोता है हमारे।
3: अच्छा। जी हम तो जो भी गतिविधि आकाशवाणी की होती है, किसी भी केंद्र की हो, चाहे सागर का हो, जबलपुर का हो, भोपाल का हो या छतरपुर का हो, आप सबको उसको जानकारी दे देते हैं और अपने मोबाइल में जो भी है जैसा भी है उसको कर लेते हैं। और आपको उसमें हम पत्र भी भेजते हैं, मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से मन जाएगी तो मैं आपकी दुकान में
2: आपका नाम शामिल होता रहता है समय समय पर, सुनते रहते हैं। अच्छा, आपको बता दें हम आज बातचीत लेकर आए हैं स्वास्थ्य के विषय में, तो आप बताइए इस मौसम में किस तरह अपना ख्याल रख रहे हैं?
3: मौसम क्या है मैडम, बरसात का तब शुरू हो ही गया है, बारिश से ही बचना है ताकि कोई बीमारी वगैरह बीमार ना हो पाए। पानी विशेष तौर से छान कर और गर्म पानी पीना चाहिए, इससे बीमारी भी नहीं होती। जगह जगह पानी भरा नहीं होना चाहिए, मच्छर पैदा होती है इससे, जिससे बीमार पड़ जाते हैं। और सब्जियां वगैरह जो आप खिलाती हैं उनको धोकर बनाया जाए तो और अच्छा रहेगा।
2: चलिए मनोज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आज हमारे विषय पर, आप बता दीजिए आज आपकी फरमाइश क्या है?
3: फिल्म का नाम है सागर और गीत के बोले सागर किनारे।
2: आकाशवाणी सागर से सुनते हैं सागर फिल्म का ये गीत।

0: नमस्ते सर।
1: नमस्ते, बताइए भाई साहब कौन बोल रहे हैं?
0: हरी कृष्ण है वो बोल रहे हैं मैडम जी, मुड़ी गया से।
1: हरी कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या करते हैं आप?
0: मैडम जी विकलांग है,
1: जी आप कहाँ से दिव्यांग है?
0: मैडम
1: अभी आपने कुछ पढ़ना लिखना सीखा है ब्रेल लिपि में?
0: मैडम जब देखता नहीं है तो कुछ नहीं सीखा।
1: देखिए आप ना मन से हार मत मानिए, कुछ ब्रेल लिपि सीखिए अगर आप, तो उससे क्या है आप बहुत सारी किताबें हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं और किताबों के माध्यम से आप दुनिया देख सकते हैं।
0: जी जी मैडम जी,
1: कभी भी देर नहीं होती, आप कुछ भी कर सकते हैं। किशन जी बताइए आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, क्या करते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है?
0: मैडम जी जैसे मैडम जी और
1: आप अपने समय में कहीं व्यस्त हैं तो आपका मन इधर उधर नहीं भटकता है और मन को शांति भी मिलती है।
0: जी
1: देखिए आज हम ऐसा ही विषय लेके आए हैं, विषय है हमारा स्वास्थ्य की देखभाल करें। आप बताइए कुछ स्वास्थ्य के विषय में बताना चाहें, आप क्या क्या करते हैं अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए?
0: मैडम स्वच्छ रहे, खाना पीना स्वच्छ खाए, पर्यावरण बचाए मैडम जी, पेड़ पौधा लगाए।
1: आप थोड़ा बहुत बाहर निकलते हैं घर से, कुछ थोड़ा बहुत टहलने वहलने जाते हैं?
0: जी जाते हैं मैडम।
1: वही सबसे जरूरी है कि हम प्रकृति के थोड़ा करीब रहें।
0: हम तो सबसे वही मैडम जी के पूरे पौधा लगाए, पर्यावरण बचाए।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कहना है आपका।
0: जी मैडम
1: जी, आपको किस तरह के गीत संगीत का शौक है?
0: मैडम जी मेरा सलम को सुनाओ टिप टिप बसरा पानी।
1: अब आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का मोहरा फिल्म का ये गीत।

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: हम बोल रहे राजा राम कुशवाहा ग्राम सरका खेरा से बोल रहे मैम।
1: सरका खेरा किधर पड़ता है राजा राम जी?
0: मैम एक टीकमगढ़ के पास पड़ता है, बड़ा गांव धसान, मतलब तहसील बड़ा गांव लगता है मैम।
1: तो राजा राम जी करते क्या है आप?
0: मैम दिखता नहीं है हमको, हम तो केवल बैठे रहते हैं, संगीत के शौकीन है हम मैम। ज्यादा वो ऑर्गन होता है मैम,
1: हाँ
0: वो बजाते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, देखिए आपने अपनी जो दिव्यांगता है उसको बाधा नहीं बनने दिया, उसके बावजूद आपने कुछ सीखा है और आप उसको बजाते हैं। कुछ अगर आपके पास रखा हो तो थोड़ा सा सुनाएंगे हमको?
0: नहीं मैम, पास तो रखा है मैम, अभी लाइट नहीं है मैम, बजना सुना देता मैम।
1: चलिए तो बताइए ना, कैसे आपने किससे सीखा, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी?
0: मैम वैसे कि हमारे गुरु तो मैम अभी तक कोई नहीं है, हमने अपनी इच्छा से सीखा है। हमको मन में लगा था कि मैं ये बजाना ठीक रहेगा, तो पापा मम्मी से बोला था कि हमारे लिए ऑर्गन ले दो, मैं ऑर्गन बजा के अपना मतलब जो भी है। देखो मैम तो पैसे कमाना तो पड़ेगा, जिंदगी बहुत लंबी है अभी, आजकल कोई किसी का नहीं होता है मैम, ये तो आपको पता होगा।
1: देखिए ये नहीं कह सकते हम, ये एकदम सर्वमान्य सत्य नहीं कह सकते कि कोई किसी का नहीं है, बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए करते हैं।
0: वो तो ज्यादा, फिर भी मैम जैसे कि जिंदगी बहुत लंबी है अभी।
1: आपके पास ये आय का भी जरिया है क्या, आप इसको कहीं और प्रोग्राम वगैरह में भी बजाते हैं?
0: हाँ मैम प्रोग्राम में जाते हैं, जो जैसे भागवत संगीत होता है, वो राम कथा होती है 9 दिन की, और प्रोग्राम में भी चले जाते हैं, जैसे युगल गीत है, कुछ भी है।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, हमें आपकी जज्बे को हम सलाम करते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, और आपके माध्यम से हम अपने अन्य श्रोताओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि कुछ करिए।
0: तो अपने श्रोताओं से भी ये कहता हूँ कि देखो कुछ ना कुछ करना जरूरी है, कुछ अपने लिए करो, दूसरों के लिए भी करो, जिसमें आपके बच्चे भी सुरक्षित हों, वो भी आगे के लिए कुछ कहना सीखें।
1: अजय राम जी देखिए आपके माध्यम से अन्य श्रोताओं तक ये बात पहुंच रही है कि आप कभी देर नहीं होती, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए।
0: कुछ लोग सोचते हैं मैम जैसे ढोलक बजाना होता है, तो बहुत से आदमी ये कहते हैं कि अब मैं 30 साल का हो गया हूँ, अब मेरे हाथ नहीं लौटेंगे, तो मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मन में अगर लगता है कि मैं मतलब मैं ये काम कर लूंगा, तो मैम कोई कितना भी

0: विषय पे लौट आते हैं। आज के हमारे फोन करें गीत सुने का विषय है स्वास्थ्य की देखभाल करें। आप बताइए स्वास्थ्य के लिए आप क्या करते हैं?
1: मैम मैं तो यही कहता हूँ कि धूमपान से बचे रहें, अगर रोड पर बाइक या कोई भी फोर व्हीलर चला रहे हैं तो मैम अपने सेहत का ध्यान रखें, तेज गाड़ी ना भगाएं, अपने स्पीड को नियंत्रित रखें।
0: और इसके अलावा आप योग व्यायाम ये सब भी कर सकते हैं, आप कुछ करते हैं योग व्यायाम या सैर पे जाना कुछ इस तरह आपने कुछ अपनी दिनचर्या में अपनाया हुआ है?
1: अभी हमारे एक मतलब दो चार दोस्त हैं, हमको भले नहीं दिखता मगर उनको दिखता है, उनके साथ में जाते हैं करीबन 5 बजे से 6 बजे तक दौड़ लगाते हैं मैम, और अपने योग में जो भी बनता है थोड़ा बहुत वो भी करते रहते हैं।
0: बहुत अच्छे विचार लगे राजा राम जी आपके। अब बता दीजिए आज हमारे कार्यक्रम में आप फरमाइश क्या लेकर आए हैं?
1: कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसे डाला।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
0: ग्राम कन्या निशा सत्री में शहरवाद।
1: प्रवेश जी, बताइए क्या करते हैं आप?
0: सर कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं अभी।
1: किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
0: सर अभी हम आठवीं पढ़ रहे हैं मैम।
1: रेडियो सुनने की आदत आपकी हो चुकी है यानी?
0: जी रेडियो सुन रहा है अभी।
1: कौन कौन से कार्यक्रमों को पसंद करते हैं आप?
0: मैं मुख्य कार्यक्रम सुनते हैं, जैसे आकाशवाणी या समाचार है, न्यूज है और लोकगीत है, गीत है, किसान वाणी है।
1: यानी आप बहुत सारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। और एक हमारे यहाँ बच्चों के लिए अलग से कार्यक्रम आता है, बाल सभा। आपने उस कार्यक्रम को सुना है?
0: जी बाल सभा कार्यक्रम सुनते हैं।
1: कैसा लगता है आपको बाल सभा?
0: सर बाल सभा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है आपका।
1: उसमें हमारे यहाँ एक कहानी का सेगमेंट आता है, वो सुना है आपने?
0: हाँ जी, होता है बाबा वाली कहानी का।
1: हाँ, बाबा का पिटारा,
0: एक नंबर लकिया की कहानी।
1: और एक कार्यक्रम और आता है उमंग।
0: जी
1: उमंग कार्यक्रम भी बच्चों के लिए बनाया गया है, 11 बजे आता है सोमवार से शुक्रवार। तो उमंग कार्यक्रम भी आप सुनिए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आती हैं, पढ़ाई के लिए भी और मनोरंजन के लिए भी।
0: मैं सुनते थे, आप सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
1: अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है प्रवेश जी। हमारे आज के कार्यक्रम में हम मुद्दे की बात लेकर आए हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और खान पान का ध्यान रखना चाहिए। घर का ही खाना खाना चाहिए।
0: खान पान करना चाहिए।
1: हाँ, आप बताइए आपका खान पान कैसा है? आप बाहर का तो नहीं खाते बहुत ज्यादा?
0: नहीं मैं, हम तो घर का ही खाते हैं।
1: वो ज्यादा तला भुना भी नहीं खाना है? रोज रोज पूड़ी कचौड़ी नहीं खाना है?
0: जी मैम।
1: आप बताइए, आप स्कूल में टिफिन ले जाते हैं?
0: हाँ जी ले जाते हैं, उसमें मैम दाल है, चावल है, रोटी है, ये सब ले जाते हैं।
1: पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी?
0: पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है, अभी पेपर होगा, 75 नंबर बने हैं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी कि आप जीवन में कुछ बहुत अच्छा हासिल करें। बताइए आज आप गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: मेला दिनों का गाना सुनना चाहते, मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, लीजिए सुनिए।

0: हेलो
1: जी नमस्कार, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम का नाम है, फोन करें, गीत सुने।
0: नमस्कार, मैं खातेगांव जिला देवास,
1: नाम बताइए।
0: गोविंद जलपुरिया।
1: चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कर रहे थे आप।
0: मैं बस टेलीफोन ही लगा रहा था आपको।
1: अच्छा वैसे करते क्या हैं आप गोविंद जी,
0: मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, रिटायरमेंट है मेरा।
1: तो कैसी चल रही है रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी।
0: रिटायरमेंट बस यही आलो फरमाइश वगैरह ये वो करना है, यही इससे ही समय निकलते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, रेडियो के साथ आप सूचना शिक्षा और मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं घर बैठे बैठे।
0: हाँ शुरू से ही है, वो तो बचपन से ही मेरे को रेडियो से लगाव है। मैंने रेडियो की दुकान ही खोली थी, और मतलब पहले बाल वाले रेडियो लगते चलते थे, तो वो मैंने ट्रेनिंग दी थी इंदौर में।
1: अभी भी चलती है आपकी रेडियो की दुकान।
0: नहीं आपने मेरे से बनता नहीं है, पहली बार तभी मेरा टेलीफोन लगा है।
1: चलिए अब उम्मीद करते हैं आप हमें यूं ही कॉल लगाते रहेंगे, ये पहली बार आखिरी बार नहीं होगा हमारे लिए, है ना।
0: ठीक है
1: तो गोविंद जी ये बताइए, आपकी सेवानिवृत्ति के बाद की जो जिंदगी है, इसमें आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख रहे हैं।
0: हाँ स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, सुबह घूमने जाते हैं।
1: कितने किलोमीटर जाते होंगे लगभग।
0: सुबह मैं जाता हूँ, बस ज्यादा लेट भी नहीं और दिन भी नहीं, मतलब सुबह 6 बजे के करीब निकलता हूँ, 7 बजे 7:30 बजे तक।
1: यानी कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर आप चल लेते हैं। खान पान का कुछ ध्यान रखते हैं।
0: खान पान का रखते हैं, हम ये चावल वावल नहीं खाते।
1: क्या खाते हैं, मोटे अनाज शामिल किए हैं आपने अपनी डाइट में।
0: साग रोटी में ज्यादा विशेष ध्यान रखते।
1: कई बार हम देखते हैं लोग रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा उनको मानसिक स्वास्थ्य की भी समस्या आती है, थोड़ा डिप्रेशन का शिकार।
0: हाँ वो थोड़ा है, तो थोड़ा है वो, सही है बिल्कुल।
1: हाँ बहुत सारे लोगों को इस तरह देखा है कि रिटायरमेंट के बाद उनको लगता है अब हम किसी काम के नहीं है, और अब तो बस रिटायर हो गए, अब तो हम क्या बुढ़े हो गए एक तरह से। तो हमें आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, आप बताइए ना आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं।
0: मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर क्या, एक तो अरे ये बहुत मेरे लिए तो रेडियो सुनना गाने सुनना आई है सबसे बड़ा आयुर्वेदिक इलाज है।
1: चलिए यूं ही आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी कामना है। बता दीजिए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
0: सर ये हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का, बरसात पिक्चर है पुरानी, इसका गाना है।
1: बहुत अच्छा गीत है, बहुत प्यारा गीत है, और बहुत दिनों बाद ये गीत सुनने को मिलेगा। चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का बरसात फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
0: गोविंद कुशवाहा बोल रहा है, चार नंबर के साथ।
1: क्या करते हैं आप?
0: मैडम जी, बस चल रहा है खेत किसानी का काम।
1: बखन्नी हो गई?
0: हाँ, बखन्नी बस लगी है, बस हो रही है।
1: चलो गोविंद भैया, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छी बारिश हो और सभी अन्नदाताओं के घर में बहुत सारा अन्न आए, अच्छा फायदा हो आप लोगों को। तो गोविंद जी बताइए, आप करते क्या है इसके अलावा, खेती किसानी के अलावा?
0: खेती किसानी तो ये करते हैं मैडम जी, दुकान खोले थे किराने की दुकान पे। आपको आपके पूरे कार्यक्रम सुनते हैं मैडम जी, बहुत अच्छे। फोन करेगी फोन करे लोग सुबह सुबह मानस गान और ये भक्ति
1: जी
0: और ये किसान बाड़ी में चलते ही।
1: अच्छा, कोई एक कार्यक्रम बताइए जो पूरे दिन में सबसे अच्छा कार्यक्रम आपको लगता है। और उस
0: मैडम जी ऐसा है कि फोन करने की सुना है इसके तो ज्यादा बेहतर है कि फोन करने की सुने आएगा। रविवार को जैसा आता है तो माना ये लगता है कि फोन करने की सुने आ रहा है,
1: यानी फोन करेंगे सुने का इंतजार रहता है, चाहे आपका कॉल लगे चाहे ना लगे।
0: हाँ, सुनते रहते हैं बराबर।

0: कि क्या होता है फोन करेंगे सुने एक ऐसा कार्यक्रम है अन्य श्रोताओं का जिसमें कॉल आता है और आप उन लोगों के बारे में भी जान पाते हैं, देख नहीं पाते पर आप उन लोगों को सुन के जानते हैं, उनके विचार जानते हैं।
1: मैडम ये तो रहता है कि श्रोताओं की बात भी होती रहती है और मनपसंद की गाने भी सुनने को मिलते
0: हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती है तो अच्छा मनोरंजन भी होता है। गोविंद जी, आज हमारे कार्यक्रम में हम मुद्दे की बात लेकर आए हैं, उस पर आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख रहे हैं?
1: ये तो मैडम ये ऐसा है कि कहा है कि जो साफ सफाई को रखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मच्छर माने इकट्ठा न होने चाहिए, पानी भरो न रहने चाहिए और एक तो साफ सफाई रखनी ही चाहिए।
0: एक चीज हम आपके माध्यम से हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं तक पहुँचाना चाहेंगे कि इंटरनेट पे देख के अपना इलाज न करें, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो डॉक्टर को दिखाएं।
1: जी जी,
0: आजकल क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है, कुछ भी दिक्कत हुई तुरंत उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया और इलाज अपनाने लग गए।
1: और क्या मैडम, कहा देरी नहीं करनी चाहिए, जैसा हो भी गया आपकी बीमार तो तुरंत डॉक्टर को दिखाओ।
0: हाँ, डॉक्टर को जरूर दिखाओ, बिल्कुल सही कहा, देरी ना करें। लोग टालते रहते हैं, अपने लक्षणों को नजरअंदाज करते रहते हैं और वो समस्या फिर बड़ी बन जाती है।
1: छोटी सी गलती बहुत बड़ी हो जाती है।
0: डॉक्टर के पास जाने से ना घबराएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, समय पर उठें, समय से अपना थोड़ा योग व्यायाम करें, सैर पे जाएं, खान पान अच्छा रखें। जी जी, चलिए गोविंद जी बता दीजिए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैडम जी दिलवाले को सुनवा दीजिए, ऐसी वो एक लड़की से मैं प्यार करता था, जीता था जिसके लिए।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का दिलवाले फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फोन करें गीत सुने का पुनः प्रसारण। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 11 बजे हैं। अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
0: वहाँ क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
0: वाह, ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
0: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
0: श्रोताओं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
0: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
0: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
0: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
0: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
0: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
0: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
0: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता
0: जी। विमलेश जी, श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
0: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
0: जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
3: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
3: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
3: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
3: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
3: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
3: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय

इसे पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो। अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं।
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज

0: मस्ती करो, खेलो कूदो।
1: हाँ ये तो है, आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
0: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं। और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
0: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहेम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित

0: क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
1: हम लोग आपके इस ककाटो पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
2: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
3: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
1: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
2: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
3: कैसे चित्र?
2: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
1: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
2: क्यों नहीं, अभी चलिए।
1: चलिए
2: आइए।
1: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
3: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्स-रे फोटो हो।
1: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
3: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
1: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
2: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
1: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
4: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
2: गुड मॉर्निंग, आइए आइए आइए।
1: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
2: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
1: अच्छा अच्छा,
2: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
3: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
2: जी।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
3: वाकई कमाल है।
2: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
1: सचमुच?
3: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद ले।
1: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
2: लीजिए, ये आपका हुआ।
1: इसकी कीमत?
2: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
3: सच?
1: धन्यवाद।
5: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
0: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते। और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
6: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। बस कुछ ही पलों में सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रंग तरंग में आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा, जिसे संगीतबद्ध किया है उत्तम सिंह ने, गाया है जगजीत सिंह और प्रीति उत्तम ने, फिल्म पिंजर से जिसे लिया गया है। आइए सुनते हैं साथियों की आवाज के साथ में ये नगमा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अंतिम नगमा, जो कि है द खजाना कॉन्सर्ट से। तलत अजीज की आवाज है और तलत अजीज के संगीत से सजा हुआ था। और हम अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे एक और नगमा जिसे पंकज उदास ने गाया था और पंकज उदास की ही संगीत से सजा हुआ है। आइए सुनते हैं ये नगमा खुशबू बनकर द खजाना कॉन्सर्ट से।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के ठीक 12 बजने वाले हैं। हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

दीवानिया फिल्म से सुन रहे थे हम यह गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रवि का है संगीत। आज जन्मदिवस है अभिनेत्री नीतू सिंह का, तो चलिए सुनते हैं आज यादों की महफिल में उनके ही द्वारा, अभिनय के द्वारा सजाए गए गीतों को।

0: हम सुन रहे थे याराना फिल्म से यह गीत किशोर कुमार की आवाज़ में अनजान के बोल और राजेश रोशन के संगीत से सजा हुआ कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा
5: रामा शेट्टी
4: और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं अगला गीत रफू चक्कर फिल्म से कंचन शैलेंद्र सिंह की आवाजें, गुलशन बाबरा के हैं बोल और कल्याण जानन जी का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे जानी दुश्मन फिल्म का यह गीत आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में वर्मा मलिक के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीत राजमहल फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। वर्मा मलिक और तुलसी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे ये गीत प्रियात्मा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में योगेश के बोल राजेश रोशन के संगीत के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीत परवरिश फिल्म से आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ यह गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत जिंदा दिल फिल्म से। सुन रहे थे हम अभी ये गीत जिंदा दिल फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में, वर्मा मलिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और आइए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत जो कि द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से है। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देववर्मन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर हाजिर होगा आपके बीच में बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक कार्यक्रम जहां पर लेकर आते हैं हम कुछ बातें यानी इबारत के रूप में और ढूंढते हैं कुछ नगमों को। आज की इबारत है, जीवन में रोटी कपड़ा और मकान तो आवश्यक है, पर इनके साथ वे छोटे छोटे सपने और अपनापन भी जरूरी है जो चेहरे पर मुस्कान ले आए। फिल्मों में अभिनेता और अभिनेत्रियां इन्हीं जीवन रंगों को जीते हुए कभी डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, वकील, पुलिसकर्मी, गायक गायिका, बावर्ची, टूरिस्ट गाइड, तांगा चालक या अनेक अन्य किरदारों में नजर आते हैं। तो आपको बताना है आपका कौन सा अभिनेता या अभिनेत्री किस किरदार या गणवेश में आपको अधिक पसंद आया। हो सकता है आपकी और हमारी पसंद और उनसे जुड़े गीत भी एक जैसे हों, और यदि ना भी हों तो उन सुनहरे दिनों को याद करके अपनी यादों को ताजा करने का आनंद ही अलग होगा। चलिए चलते हैं, हम उन साथियों के संदेशों को पढ़ते हैं जिनमें हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज के गद्यांश में जीवन की बड़ी सच्चाई को उजागर किया गया है, इसे जीवंत बनाने वाली फिल्म किरदार की बात कही गई है। छोटे छोटे सपने होते हैं जो मन में उम्मीद की किरण जगाते हैं। जीवन में कोई बहुत बड़ी और जटिल पहेली नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत छोटे छोटे पलों और एहसासों का खूबसूरत गुलदस्ता है जिन्हें हम रोज जीते हैं। खुशियां हमारे भीतर ही मौजूद है, और इसी तरह से उन्होंने सारी बात कही है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है या कोई व्यक्ति वो कोई रोल नहीं निभा रहा है, वह अपना काम कर रहा है अपनी आजीविका के लिए, पर अभिनेता और अभिनेत्री उस किरदार को किसी फिल्म की कहानी की जरूरत के हिसाब से निभाता है, अभिनय करता है और उसके हिसाब से उसका मेकअप किया जाता है। शायद वह स्वयं का मेकअप भी करता होगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले गीत की तरफ, जिसके लिए हमारे श्रोताओं ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस गीत के बाद हम उसके बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन ये बताइए कि डाकिया से मिले कितने दिन हो गए हैं, या पिछली बार किसी को चिट्ठी या खत कब डाला था, बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत।

0: है बाबू।
1: क्या रे?
0: छह महीना हुई गो, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी का लिखियो ना।

कि आप पिछली बार डाकिया से कब मिले थे, तो हमारी एक श्रोता लिख रही है कि हम मिले तो कई दिनों से नहीं, लेकिन आज आपने मिलवा दिया। ये भी अच्छी बात है, पर एक बात देखिए ना कि ये जो डाकिया के रोल में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि राजेश खन्ना ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है और यह गीत उनके ऊपर बहुत अच्छा फिट होता है। पत्र मिलने वाले के दिल की बात इस गीत में कही गई है, साजन के आने की खबर, शादी की बात, बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। जी बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता बता रहे हैं कि आकाशवाणी और डाक से उनका गहरा संबंध था, परंतु अब कम हो गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम भी तो मनचाहे गीत लेकर आते हैं ना आपके बीच में, तो अपने पत्र हमारे पास भेजते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल ने हमसे चिट्ठी और खत लिखने का काम कम हो गया, खत्म ही हो गया है, और मोबाइल ने वो भी छीन लिया है। कई साल हो गए खत लिखे, डाकिया अब भी कम नजर आ रहे हैं। खत आप विविध भारती के लिए लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हमारी श्रोता बताती है कि कभी उन्होंने एक पोस्ट पार्सल किया था और किसी के शुभकामनाओं के साथ उसके उनके जन्मदिन के लिए ड्रेस भेजी थी, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए हम चल रहे हैं हमारे श्रोताओं की बातों की ओर, कि वो बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि उन्हें कौन कौन से किरदार पसंद है, जिसमें राजेश खन्ना का ये डाकिया डाक लाया, उसके साथ पलकों की छांव में जो गीत है उन्हें पसंद है, बड़ा अच्छा किरदार था इस फिल्म का। इसके साथ उन्होंने कई सारी फिल्मों को पसंद किया है, और हम ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे पलकों की छांव में फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। अब हमारे श्रोताओं ने बताया है कि जैसे थ्री इडियट्स में करीना कपूर ने इस फिल्म में डॉक्टर पिया नाम की मेडिकल छात्रा और डॉक्टर का किरदार किया, आनंद में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर भास्कर बनर्जी का किरदार किया, जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ ही आयुष्मान खुराना ने भी एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट यानी पुरुष महिला रोग, जो पुरुष डॉक्टर हैं वह महिला रोग विशेषज्ञ का किरदार निभा रहे थे, वह काम किया। कबीर सिंह में अभिनेता शाहिद कपूर की एक बड़ी जुनूनी गुस्सेल अलग तरीके का किरदार निभाया, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में निभाया। इसके साथ ही कई सारी चीजें हैं जो कई सारे किरदार हैं, जैसे डॉक्टर बनते हैं, पुलिस बनते हैं, कभी एक गुंडे का किरदार भी करते हैं, और कभी कभी कई किरदार ऐसे कर जाते हैं जिन्हें देखकर हम खुद भी डर जाते हैं, और शायद यही अभिनय की पराकाष्ठा है और वो वहां से जीत जाते हैं। हमारे श्रोता बताते हैं फिल्म अवतार में राजेश खन्ना ने एक मेहनती पिता का किरदार निभाया, जो किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं है, आत्मसम्मान और परिश्रम के बल पर वह संदेश देता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला है। बिल्कुल सही बात है। अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, तो बताइएगा कि ये जो गीत है इसमें हम किस किरदार की बात कर रहे हैं, किरदार कौन है और किरदार करने वाला कौन है, दोनों चीजें आपको बतानी है। और इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई याद अगर आपकी है तो जरूर साझा कीजिएगा। और इसके साथ एक प्रश्न और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो ये है, ऐसा कौन सा किरदार है जिसे बचपन में आपने देखा था और सोचा था हम ऐसे ही बन जाएंगे। तो चलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सुनते हैं ये गीत।

हम ये सुंदर सा गीत सुन रहे थे और हमने आपसे प्रश्न किया था कि इसमें कौन किरदार है, फिल्म क्या है, बहुत सारी बातें इसमें हुई थी। लेकिन इसके पहले हम जो गीत सुन रहे थे डाकिया पर, उसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है। बचपन में पिताजी दिल्ली अहमदाबाद में नौकरी पर जाते थे तो पत्र लिखते थे, उनका खत आता तो माँ को पढ़कर सुनाते थे। गाँव में डाकिया आता था जो घर घर चिट्ठियाँ बांटता था, गांव वाले उसकी बड़ी इज्जत करते थे। कॉलेज पढ़ने गए तो विवाह हो चुका था तो उनकी पत्नी की सहेली खत भेजती थी और हम उसका जवाब भेजते थे। क्या बढ़िया बात है ना, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है ना याद करने के लिए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, राजेंद्र कुमार डॉक्टर के रूप में, मीना कुमारी नर्स के रूप में, दिल एक मंदिर में बहुत ही शानदार फिल्म रही है। इसमें नाव पर बैठकर जो गीत है जी, बहुत खूबसूरत गीत है, हमने भी सुना है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है कि पोस्ट ऑफिस बंद हो गए हैं अधिकतर गाँव में और पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय और लिफाफे आने भी बंद हो गए हैं, इस बात की ये चिंता भी कर रहे हैं और चिंता होना चाहिए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आखिरी खत कब लिखे थे ये तो याद नहीं, पिछले साल गाँव गए थे तब पिताजी को 1978 में लिखा, अंतर्देशीय मिला, उसे संभाल कर रखे हैं। इंक पेन से इसे सजाया हुआ बड़ा सुंदर सा पत्र इनके पास में है और जिसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं अभी इस गीत की तरफ जो अभी हम सुन रहे थे, बड़ा सुंदर सा, बड़ा मोहक सा, बड़ा प्यारा सा गीत, जिसके लिए हमने आपसे पूछा कि जो भी आपने देखा है, यानी इन सब इस किरदार को देखा है, तो ये गाइड फिल्म का, राजू गाइड का, देव आनंद का किरदार है और इसने रोज़ी के लिए ये गीत गाया है, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। बहुत सुंदर गीत हैं और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बताया है कि सबसे ज़्यादा अभिनेता जयराज ने सबसे ज़्यादा फिल्मों में इंस्पेक्टर बने हैं और उन्हें विनोद खन्ना को इंस्पेक्टर की वर्दी में देखना अच्छा लगता है। क्या बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे बहुत प्यार से उत्तर देखे और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उन्होंने गाइड देखी थी और बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखा था, कितना अच्छा था ना, हम सपने भी उनके साथ जी लेते थे कई सारे। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे ढेर सारे उत्तर दिए हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि हमें अगले गीत की तरफ बढ़ना चाहिए। और एक बात और हमारे श्रोताओं के पास से आ रही है, बात ऐसी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ज़िंदगी की असली दौलत केवल रोटी कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे सपने, रिश्तों का अपनापन, चेहरे खिल उठने वाली मुस्कान है जो हर दिन को खास बना देते हैं। यही जीवन के रंग हमारी फिल्मों को भी मैं भी बड़े सलीके से सहेजे हैं, कभी सफ़ेद कोट में डॉक्टर, कभी सादगी भरे शिक्षक, कभी खाकी वर्दी में पुलिस अधिकारी, तो कभी सुरों की महफिल सजाते गायक, गायिका, स्वाद बिखेरता हुआ बरची, तो मुसाफिरों का हम सफर बनता टूरिस्ट गाइड। हर अभिनेता में अपने अपने अंदाज में अलग अलग अमिट छाप छोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। अब इसके साथ ही कई सारे सुखद क्षण हैं, कई सारी कल्पनाएं हैं, कई सारी चीजें हैं। अब एक बात हम सोचते हैं कि अगर एक अभिनेता किसी किरदार को निभाने के लिए जाता है तो वो कितनी मेहनत करता होगा, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है फिर भी वो डॉक्टर बन रहा है, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है फिर भी वो पुलिस इंस्पेक्टर बन रहा है, वो डाकिया नहीं है या वो वकील नहीं है या वो किसी भी काम को नहीं कर रहा है, पर उस किरदार को पूरी तरह से समझ रहा है कि वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, किस तरह से बात करता है, उसका मुड़ने का अंदाज क्या होगा, हर बात को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए तो अभिनेता उस किरदार को बिल्कुल हूबहू हमारे फिल्म के पर्दे पर ले आते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बहुत सरल सा प्रश्न है, इसके गीतकार बता दीजिए और फिर वही पहचानना है कि किरदार और अभिनेता दोनों का नाम बता दीजिए, ये किरदार कौन सा है और उस किरदार को कौन से अभिनेता ने निभाया है। बड़ा सुंदर सा गीत है, आपको बताना है इसके गीतकार का नाम भी।

तुम बिन जीवन कैसा जीवन, ये गीत हम सुन रहे थे उस फिल्म से जिसके बारे में हमने आपसे पूछा था। और जब हम आपसे पूछे तो आप गलत कैसे बता सकते हैं, बिल्कुल सही आपने बताया कि बावर्ची फिल्म से है। और हमने आपसे ये पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो आपने बताया कैफी आसमी, बिल्कुल सही उत्तर है। और हम बता दें कि इसे गाया है मन्ना डे ने, बड़ा खूबसूरत सा गीत है ये, और इस गीत के लिए सभी ने बड़े अच्छे से पसंद भी किया, प्यार भी किया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि उन्होंने ये बावर्ची का गाना है और इसे टीवी पर देखा है, इन्हें याद नहीं है। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले, हाँ ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम, पहले घर पर तार का बना हुआ एक हैंगर हुआ करता था जिसमें पिताजी आने वाले हर पत्र को बहुत सलीके से फंसा कर रख देते थे। आज तो पिताजी है नहीं और समय के साथ हैंगर भी गायब हो गया है। जी हमारे घर पर भी यही होता था, सभी के घर पर ये चीज़ होती थी उस समय। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बावर्ची फिल्म में राजेश खन्ना ने एक बावर्ची का रोल निभाया, एक संयुक्त परिवार के मन मुटाव को दूर करके आपस में सद्भावना और लगाव को लगाने की, फिर से जगाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, प्रेरणा देने वाला किरदार है। बिल्कुल सही बात है ये कि इतना सुंदर किरदार उन्होंने जो निभाया है। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि ये गाना राग हेमंत में है और मन्ना डे की आवाज़ है, बावर्ची फिल्म का ये गीत है। बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि हाँ इस फिल्म में हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और राजेश खन्ना की बेहतरीन किरदार जो उन्होंने निभाया है, ये फिल्म कितनी बार भी देख लें बुरा नहीं लगता है ना। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि भारतीय डाक इंडियन पोस्ट के द्वारा साधारण पोस्ट कार्ड की वर्तमान कीमत 50 पैसे है, 5 पैसे का पोस्ट कार्ड दशकों पुरानी बात है और वह बदल गया। जी बिल्कुल, बहुत समय बाद बदला। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आपने फिर से मनचाहे गीत कार्यक्रम शुरू किया है जिससे हम पोस्ट कार्ड तक पहुँचने लगे हैं, ये भी तो एक अच्छी बात है ना हमारे और आपके मिलने का। हमारे श्रोता को डाकू के रोल में धर्मेंद्र और सुनील दत्त इतने बेहतरीन लगते हैं कि वह छोटे थे तो उन्हें लगता था कि वास्तव में डाकू ऐसे होते होंगे, शायद होते भी होंगे, हम सब ने तो देखा ही नहीं है ना। और भी बहुत सारे किरदार होते हैं, जैसे क्लर्क होते हैं, जैसे दूसरे और भी किरदार होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो उन किरदारों के बारे में भी, उन किरदारों के नाम भी आप लिख सकते हैं हमारे साथ में, तो आप ज़रूर लिखिएगा हमारे साथ में। और हमारे एक श्रोता ने एक किरदार के बारे में जिक्र किया है कि बलराज साहनी की स्वाभाविक अभिनय बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने 2 बीघा ज़मीन में रिक्शा वाला की भूमिका निभाई थी कलकत्ता में, उस समय हाथ से खींचने वाला रिक्शा चलता था, हाथ

से खींचने वाले रिक्शे वाले का असाधारण अभिनय किए थे बलराज साहनी, और उनका यह किरदार जो है वह उन्हें बहुत अच्छे से याद आता है। अब देखिए जंजीर में इन्हें प्राण, एक श्रोता लिखते हैं, प्राण साहब ने गुंडे का किरदार निभाया था जिसमें उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके बारे में वह देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब हम चल रहे हैं कि अभी हम जो इन सभी किरदारों के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बचपन में टार्जन का किरदार देखा था और सोचा था ऐसे ही बिंदास उन्मुक्त होना है। आप टार्जन होना चाहते थे, बढ़िया बात है, वैसे सही बात है, जंगल में रहो, आराम से खाओ पियो और ऐश करो। वैसे ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं, एक किरदार है तेल मालिश वाला, सर जो तेरा चक्रा है, हाँ ये भी जीवंत अभिनय है जॉनी वॉकर का। ऐसे ही हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी, हम सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते परंतु हम आप तक अगला गीत ज़रूर पहुँचा सकते हैं, और अगला गीत जो है वो आप सुनेंगे। इसमें हम जो किरदार है वो डॉक्टर का है और गाना जो गा रहा है वो मरीज गा रहा है। अब उस डॉक्टर का किरदार किसने निभाया ये बता दीजिएगा, और ये बता दीजिएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, गायक बता दीजिए और जो डॉक्टर हैं उनका नाम बता दीजिए। वैसे इस फिल्म में दो डॉक्टर हैं, अगर दोनों का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा, दोनों अभिनेताओं का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा। और इस गीत के साथ मेरा एक और प्रश्न मन में चल रहा है कि कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा काम जो सोचा था और पूरा हो गया और सच में आपने वो किरदार निभाया हो, ज़रूर से बताइएगा। बताइए इस गाने को किसने गाया और इस फिल्म में डॉक्टर का जो किरदार है वो किन्होंने निभाया।

हम सुन रहे थे फिल्म आनंद का ये गीत, योगेश के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत को गाया किसने, तो आपने सही उत्तर दिया, गायक कलाकार का नाम है मुकेश। और इनके गाने के इस गीत के साथ में कुछ संदेश हैं, उन सब संदेशों को मिलाकर हमारा अगला उत्तर बन जाता है। हमने आपसे पूछा था कि इसमें डॉक्टर की भूमिका किसने निभाई, तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि मरीज आनंद फिल्म में, जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन डॉक्टर हैं और साथ में भास्कर बनर्जी नाम के डॉक्टर का किरदार वो निभा रहे हैं, और डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी का किरदार रमेश देव निभा रहे हैं। उसके साथ में बताया कि ललिता पवार एक सहृदयी नर्स का जो किरदार है जी, जहाँ पर उन्हें माँ का एक उपाय दिया गया है, माँ का एक पद दिया गया है, उस पद के साथ में उसे निभा रही हैं। ये सारी सूचनाएं आप सभी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितने ज्ञानी हैं, कितना नॉलेज है उन्हें, हर विषय पर आपके पास में ज्ञान है। और ऐसे ही एक और ज्ञान हमारा और हमारे श्रोता का मिल गया जो हमें बहुत अच्छा लगा पढ़कर। उन्होंने बताया कि अगला जो गाना हम आपको देने वाले हैं उसके बारे में बताया, पर उसके पहले एक दो संदेश हैं जो पढ़ लिए जाने चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, प्राण की भूमिका हमेशा विलेन और हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े वाले काम होते थे, और पर्दे पर प्राण को देखकर मन खराब हो जाता था, और उपकार जंजीर फिल्म में वो अलग रूप में ही दिखे। हालांकि ऐसा उनके साथी कलाकार कहा करते थे कि ये सबसे बढ़िया इंसान थे, व्यक्तित्व थे, लोगों की मदद में लगे रहा करते थे। हमारे श्रोता कह रहे हैं, साप्ताहिक सत्संग में ढोलक हारमोनियम वादक की कम उपस्थिति होने के कारण। अच्छा जी, कुछ उन्होंने संदेश भेजा है, उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हमारे एक श्रोता ने बताया कि उनके पतिदेव का पसंदीदा गीत है, वह उनसे हमेशा फरमाइश करते हैं कि वह गाया करें। ऐसे ही बहुत सुंदर सा गीत है बाबू मुशाई, इस गीत के साथ में हम इस गीत को इस शब्द के साथ याद करते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं उस अगले गीत की तरफ जिसमें हमारे श्रोता ने भी बताया, और ये गीत हमने भी छांट के रखा था कि एक अभिनेता या एक अभिनेत्री किसी एक ही फिल्म में 1, 2, 3, 4, 5 या कई सारे अन्य किरदारों को भी निभा लेते हैं। और ऐसा ही एक फिल्म नया दिन नई रात में संजीव कुमार 9 अलग किरदारों में दिखे हैं। तो चलिए हम ये वाला जो गीत है वो आपको सौंप रहे हैं, और आप याद कीजिए ऐसी कौन सी फिल्में देखी हैं जिसमें एक ही व्यक्ति ने कई सारे किरदार निभा लिए हों, वही पुलिस वाला भी बन गया हो तो वही गुंडा भी बन गया हो, कौन जाने कि वही व्यक्ति एक सामान्य किसान हो, थोड़ी देर बाद उसका ही बहरूपिया आ गया हो, है ना, किसी और रूप में। ऐसी कई सारी बातें होंगी आपके मन में, तो जल्दी से हमें बताइए, एक ही प्रश्न दे रही हूँ इस बार में आपको, जल्दी से बताइए ऐसा कौन कौन से किरदार आपको याद हैं, ऐसी कौन कौन सी फिल्में आपको याद हैं जहाँ पर बहुत सारे किरदार एक ही अभिनेता ने या अभिनेत्री ने निभाए हैं। बहुत

हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत, और इस गीत में हमने बस आपसे ये पूछा था कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से किरदार हैं जो कई लोगों ने कई बार निभाए हैं, एक ही अभिनेता ने कई सारे किरदार निभाए हों, तो ऐसी भी कई फिल्में हैं। तो संजीव कुमार को ये याद किया लोगों ने, और बड़े अच्छे से हमारे श्रोता ने बताया कि अंगूर में जो उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है, जी बिल्कुल, बड़ी मज़ेदार भूमिका रही है वो। और हमारा दिमाग भी कुछ समय के लिए घूम जाता है, पर जब पूरी फिल्म देखते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया कि राजेश खन्ना फिल्म सच्चा झूठा, दिलीप कुमार राम श्याम, हेमा मालिनी सीता गीता, और हमारे श्रोता ने जो बात बताई थी वह भी यहीं पर है कि बहुत अच्छे से राम श्याम, गोरा काला, हम दोनों इज्जत, जॉनी मेरा नाम जैसे फिल्म का नाम लिया कि कॉमेडी में ट्रिपल रोल, पहला राम, दूजा राम, तीजा राम का आईएस जौहर ने, अभिनेता आईएस जौहर ने इस किरदार को निभाया था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किरदार था, वो बड़ा आनंद के साथ था। इसमें मलयालम अभिनेता जॉनसन जॉर्ज ने फिल्म अरानू नजान में अभिनय की मात्रा 45, एक ही अभिनेता द्वारा 45 अलग अलग अभिनय किए गए एक ही फिल्म में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने आखिरी रास्ता में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 3 अलग अलग भूमिकाएं निभाई। ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने सच्चा झूठा, राम श्याम, सीता गीता, इन सभी फिल्मों की फिर से जिक्र किया है। गोविंदा को देखा था फिल्म हद कर दी आपने में, दादा दादी, माँ पिता, बहन, सारे रोल उन्होंने ही किए थे। जी जुड़वा, बेटों की तेरी भूमिका कई सारे निभाए हैं।

अमिताभ बच्चन ने इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, फिल्म महान के बारे में, राणा रणवीर, इंस्पेक्टर शंकर और गुरु दूसरा बेटा जो एक स्टेज एक्टर है इसके बारे में, आंटी नंबर वन के बारे में जिक्र हो रहा है, कई सारी फिल्मों के बारे में जिक्र हो रहा है। और इन सब फिल्मों के साथ में एक और है रेलवे इंजीनियर, ये भी बड़ा अच्छा काम करते हैं और इनका बर्निंग ट्रेन में विनोद खन्ना ने इस किरदार को निभाया, ऐसे हमारे श्रोता बता रहे हैं। पर देखिए कितनी सारी बात होती है ना, कितनी अच्छी बात होती है ना कि हमारे ये किरदार हमें कई लोगों से जोड़ देते हैं, कई किरदारों से जोड़ देते हैं। अब अगर हम तारे जमी पर की बात करें तो वहाँ पर एक शिक्षक है और एक बालक है, दो अलग अलग किरदार निभा रहे हैं और दोनों किरदार हमें ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से बच्चों को संभालना है। अगर हम सोनम कपूर की बात करें तो एयर हॉस्टेस बनती हैं नीरजा 2016 की इस फिल्म में और क्या बढ़िया किरदार निभाती हैं। नासा के वैज्ञानिक के रूप में शाहरुख खान दिखाई देते हैं, ये हमारे श्रोताओं ने बताए, उन्हीं में से हम जिक्र कर रहे हैं कि शाहरुख खान नासा के वैज्ञानिक बनते हैं स्वदेश फिल्म में और वह बताते हैं कि अपना देश कितना अच्छा है, कैसे आना है वापस, वो किसी तरह से वह वापस आ जाते हैं। नायक द रियल हीरो में अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं और वह बड़े अच्छे से उसके बारे में बताते हैं। एक और फिल्म का जिक्र हमारे श्रोता कर रहे हैं अनुरोध, वह कहते हैं कि राजेश खन्ना ने पर्दे पर अपने असली नाम को छिपाकर छद्म नाम से अपने गायन को प्रदर्शित किया है और बहुत बढ़िया गीत गाए हैं। जी बिल्कुल, हिचकी फिल्म में रानी मुखर्जी ने उन लोगों की समस्या को भी बताया जो बराबर से लगातार बोल नहीं सकते, बीच बीच में अटकते हैं या कोई समस्या आती है, वो कई बार हम भी हंस देते हैं उनके ऊपर तो हम भी गलत हो जाते हैं, है ना। कितनी सारी चीज़ें हमें फिल्मों से देखने और सीखने को मिलती हैं। वह एक श्रोता बताते हैं कि पिंक में अमिताभ बच्चन ने एडवोकेट दीपक की और फिल्म जॉली LLB में अरशद वाशी ने, फिल्म बंदा में मनोज बाजपेयी ने एडवोकेट सोलंकी पीसी सोलंकी का किरदार, फिल्म मुल्क में ऋषि कपूर और तापसी पन्नू, फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में अभिनेत्री यामी गौतम ने एडवोकेट की गुलजार रिजवी का और फिल्म दामनी में अभिनेता सनी देओल ने एडवोकेट की गोविंद का जो आइकॉनिक प्रसिद्ध किरदार निभाया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्ती फिल्म का जिक्र किया जा रहा है कि नाना फलसी कक्कर ने इस एक शिक्षक का किरदार निभाया था शर्मा जी का और किरदार रामनाथ गुप्ता रामू का संरक्षक बनकर उसकी पढ़ाई में सहयोग किया था। हमारे लिए कितनी सारी शिक्षाएं इन सब से मिलती हैं, ऐसी कोई शिक्षा अगर किसी किरदार से आपको मिली है तो ज़रूर साझा कीजिएगा और बताइए कि अगला जो गाना है वो अगले गाने में हमारा जो किरदार है वो किस किरदार को निभा रहा है और उसके साथ साथ कौन सा व्यापार कर रहा है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। वो किरदार गायक अभिनेता कुछ भी हो सकता है उस फिल्म में और उसके साथ साथ वो एक काम भी कर रहा है अपना पेट पालने के लिए, बताइएगा वो काम क्या है।

हम सुन रहे थे ये गीत आला फिल्म से यशुदास की आवाज में, और इसको संगीतबद्ध किया जयदेव ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म के कौन से किरदार को ये सभी बड़े अच्छे से निभा रहे थे, इसमें जो अभिनेता हैं, तो आप सबने बताया कि अमिताभ बच्चन ने कवि और गायक का किरदार निभाया, और हमारे श्रोता ने बताया कि अहीर भैरव राग है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आप रागों के बारे में जानते हैं और आप जानकारी देते भी हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि इसमें बिजली मिस्त्री बने हैं और सौदागर में गुड़ बेचते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें उन्होंने तांगा यानी वो घोड़ा गाड़ी वाला जो तांगा है उसे भी चलाया है जब अपने खुद के पिता को अपने घर तक उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। तो ये भी एक बढ़िया बात है कि एक पुत्र बगावत करता है लेकिन अपने संगीत के लिए बगावत करता है और संगीत के लिए जीता भी है। हमारे श्रोता ने बताया बनारस का गबरू जबान फिल्म घातक में सनी देओल मुंबई शहर पहुंचकर अजब की भूमिका निभाई है। दाग में राजेश खन्ना ने व्यक्ति दोहरी भूमिका निभाई है। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं देश की सेवा में फौजी का रोल करने वाले धर्मेंद्र फिल्म हकीकत में बेहतरीन अभिनय किया था। जी आखिरी रास्ता में दो अमिताभ थे, महान में तीन अमिताभ थे। बहुत सारी बातें आप जानकारी दे रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा के बारे में जानकारी भी आप दे रहे हैं। इसके साथ ही आपने नई फिल्मों पुरानी फिल्मों की जानकारी दी है। साल 1960 में आई फिल्म जमीन के तारे के बाल कलाकार हनी ईरानी और डेजी ईरानी को कैसे भुला सकते हैं। यह अमीर और गरीब बच्चे की कहानी है जो जिंदगी से निराश होकर हिमालय में भगवान का घर अपनी स्वर्गीय माँ को ढूंढने के लिए ट्रक में चढ़ जाते हैं तो ड्राइवर पूछता है ओ मेरे प्यारो जमीन के तारों जाना तुम्हें कहाँ, तो बच्चे उत्तर देते हो गाड़ी वाले ले चलो हमें वहाँ, मैया हमारी है जहाँ। बिल्कुल सही बात है, सुंदर से गीत सुंदर सी बातें यहीं से हमें सीखने के लिए मिलती हैं। इसके साथ ही चलिए हम अगला गीत आपको जल्दी से सौंप देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये गीत आप ज़रूर सुने। आपको कौन सी माँ यानी फिल्मों में, आपकी माँ तो आपको सबसे अच्छी लगती ही होगी, पर ऐसी कौन सी अभिनेत्री हैं जो माँ का किरदार निभाते हुए आपको सबसे अच्छी लगी हैं, ज़रूर से बताइएगा। हालांकि हमारे श्रोता ने पहले ही भेजा है कि उन्हें निरुपा रॉय और दुर्गा कोटे जी जो फिल्मों में अभिनय करती हैं माँ का, वो बहुत अच्छा है। और उन्होंने इस गीत की बारे में भी कहा है कि पिता के किरदार में बलराज साहनी हैं, उनका उनके अभिनय का मुकाबला कोई कर नहीं सकता, तो ये बहुत सुंदर सा गीत है। ये गीत आपके लिए, आपकी माँ के लिए, आपकी माँ के साथ आपके प्रेम के लिए, पर इसके साथ एक उत्तर देना है, कौन सी ऐसी महिला है जो माँ के रूप में आपको फिल्में के पर्दे पर अच्छी लगती हैं, बताइएगा। और बताइएगा इस गीत के गायक कलाकार कौन हैं।

ये सुंदर सा गीत हम सुन रहे थे और याद कर रहे थे, इसके साथ साथ अपनी अपनी माँओं को भी हर माँ ने कितना प्यार दिया है और आप सब ने कई सारी माँओं को यहाँ पर पसंद किया है और उन माँओं में से आप सब ने बड़े प्यार से बताया हमें कि किसी को वहीदा रहमान पसंद हैं, अभी जो माँ का किरदार कर चुकी हैं राखी गुलजार आपको पसंद हैं, तो किसी ने कहा कामिनी कौशल का किरदार आपको बड़ा पसंद आया है माँ के रूप में, किसी को साधना जी, किसी को अलग अलग सुलोचना जी, दुर्गा कोटे जी, अलग अलग किरदार बड़े लोगों को पसंद आए हैं और माँ का किरदार करना इतना आसान नहीं होता, माँ का किरदार करने के लिए माँ बनना पड़ता है और लोग बने हैं। और अंत में मैं आपको ये गीत सौंप रही हूँ वहीदा रहमान की फिल्म खामोशी से जो नर्स का रोल उन्होंने निभाया है, उस नर्स के किरदार को याद करते हुए सुनिए ये गीत। अगर बता सके तो बताइए कि इसके गायक कलाकार कौन है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। संगीत आनंद मिलिंद का है और फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और अब सुनवाते हैं परदेश फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: कुमार सानू की आवाज में परदेस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी ये जो गीत परदेस फिल्म का अभी आपने सुना, इस गीत की धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से जुड़ने का उन्हें बार बार सौभाग्य मिला है। इंडोनेशिया के प्रांबानन मंदिर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को अपने लिए विशेष महत्व का बताया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। केदारनाथ और महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान को भी उन्होंने अपना सौभाग्य बताया।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स का जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुमांगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है। नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां हर साल 6500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता होगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकवेटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर योजना का 30 से 40 साल पुराना विवाद सुलझा लिया गया है। अब गुजरात 75% लागत वहन करेगा। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम योजना में प्रदेश पांडुलिपि संकलन में देश में पहले नंबर पर है। टीकमगढ़ से जम्बूद्वीप का नक्शा और बुरहानपुर से 220 वर्ष पुरानी श्री भागवत गीता पांडुलिपि मिली है। वहीं जलगंगा संवर्धन अभियान में साल करीब 7 करोड़ परिवारों की भागीदारी रही और 10,600 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय हुआ। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये सरदार सरोवर परियोजना की लागत साझाकरण के दीर्घकालिक विवाद को समाप्त करने की दिशा में मील का पत्थर है। श्री शाह ने इसे सहकारी संघवाद का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकारों से राज्यों के बीच विवाद तेजी से सुलझ रहे हैं। भोपाल में 13 जुलाई को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीसीसी डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। पिछली दो कॉन्क्लेव में कुल 32,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। कार्यक्रम में देश विदेश की कई अग्रणी कंपनियां शामिल होंगी। लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए निगम ने अब तक फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। अन्य संस्थानों को 15 से 30 दिन में कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी भवनों में फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम और 2 सुरक्षित इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य होंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच आज अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 7वां जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ। यात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी रफ्तार से सक्रिय है। पन्ना, छतरपुर, खंडवा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने आज श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर और टीकमगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दान चढ़ावे की गड़बड़ियों की शिकायत पर जांच समिति बनाई गई है। कलेक्टर प्रीति यादव ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्ष सीईओ बीएस सोलंकी हैं। आगरमालवा जिला पुलिस ने कल जिले भर के स्कूलों, ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर सेफ क्लिक 2.0 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी प्रकार से रायसेन में भी सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान का समापन कल किया गया। नर्मदापुरम के पिपरिया रेलवे चिकित्सालय और रेलवे स्टेशन पर जबलपुर रेल मंडल द्वारा टीबी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जर्जर और जीर्णशीर्ण भवनों में स्कूल संचालित नहीं करने के निर्देश दिए हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एनसीईओई भोपाल के 2 कैनो खिलाड़ी एल नेहा देवी और हर्षवर्धन सिंह सक्तावत का चयन 2026 आईसीएफ कैनो स्प्रिंट व पैरा कैनो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांबानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
2: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

की पोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, अपना बना के देखो। फिल्म से मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में, एसएच बिहारी के बोल और रवि के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे ये गीत हरियाली और रास्ता फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं बात एक रात की फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत के साथ यह गीत।

0: हम सुन रहे थे कैलाशपति फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मदन ने इसे लिखा और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत आजाद फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के हैं बोल और सी रामचंद्र का है संगीत।

0: पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। असली नकली फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। और इसी गीत के साथ आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को नमस्कार।
2: नमस्कार चंचल, आपको भी और सभी सुनने वालों को, सखी सहेली के हमारे सभी श्रोताओं को प्यार भरा मंदाकिनी जोशी की ओर से नमस्कार। क्या हाल है चंचल?
1: हाल बहुत अच्छे हैं। और देखिए ना, कितनी बार हमें ना शिकायतें बहुत करते हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो गई तो हम शिकायत करते हैं, अरे इतनी बारिश हो रही है। तो ये जो शिकायत करने का हमारा एक आदत जो बन चुकी है, अच्छा हो रहा है तो भी शिकायत, अच्छा ना हो
2: तो भी शिकायत। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और इन दिनों देखिए ना, हमारे मुंबई में तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, हमें शिकायत है कि ओहो इतनी बारिश, कैसे जाए, कहाँ जाए, और आप ही की तरह चंचल हवाएं बह रही हैं। बड़ी मुश्किल में हम लोग, और लगता है कि अरे कैसे क्या होगा। लेकिन बाहर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर आश्वासन दिए गए कि भी बारिश आने वाली है, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी है।
1: बिल्कुल, तो होता यही है कि शिकायतें भी हैं, आश्वासन है, और आश्वासन पूरे हो गए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, फिर कई बार हमारे मन से शुक्रिया भी निकलता है। लेकिन ना हो हमारी मन चाही बात पूरी तो झट से हम शिकायत करने लगते हैं, ये एक मानव स्वभाव ही कह लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल में

0: आपका या मेरे और सुनने वालों का ही मानना होगा कि शिकायतें जिंदगी में कम और शुक्रिया का भाव अगर ज्यादा ले आए तो जिंदगी कुछ आसान हो जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा चंचल आपने, और इसलिए शायद आज का विषय ये रखा गया है कि शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा। बिल्कुल।
0: इसके अलावा शब्द जो हम देते हैं हमारे श्रोताओं को जिसमें वो अपने विचार हमें लिखकर देते हैं, इसमें हम आश्वासन की बात करेंगे कि आश्वासन शब्द उनके लिए क्या मायने रखते हैं और आश्वासन को लेकर उनकी जिंदगी किस तरह से शब्द से जुड़ी हुई है, उन्हें कौन से आश्वासन दिए गए जो कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए और क्या शिकायतें उनके मन में रही।
1: बिल्कुल बिल्कुल हमारे श्रोताओं के लिए है ये सेगमेंट और शब्द हमारा विचार आपके इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपनी बात अपने जज्बात अपने भाव अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। तो आश्वासन जिंदगी में एक ऐसा शब्द है जो बहुत मायने रखता है। हमें कोई थोड़ा सा भी आश्वासन दे देता है ना, मैं हूं ना, तो ये बहुत बड़ा आश्वासन होता है हमारे लिए और हम पूरी जिंदगी उसको याद रखते हैं। तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। जब हम किसी को आश्वासन देते हैं तो तभी दीजिए जब आप उसको पूरा कर सकते हैं।
0: बहुत
1: बात कही। बहुत सारे लोगों का दिल हम जाने अनजाने तोड़ देते हैं ये कहकर कि अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, मुझसे उम्मीद करिए, मैं हूं ना, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन जब किसी को साथ की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें दोराहे पर चौराहे पर छोड़कर अलग हो जाते हैं।
0: तो ऐसे समय पर पल्ला झाड़ने वाले इंसान को भी हम हमेशा याद रखते हैं कि इन्होंने कहा था साथ देंगे लेकिन साथ देने का समय आने पर पल्ला झाड़ के अलग हो गए।
1: बिल्कुल। तो आज आश्वासन पर आप बताइए हमारे श्रोता लोग की किन किन को आपने आश्वासन दिया या आपको दिए गए आश्वासन किसी ने पूरे किए या नहीं।
0: बिल्कुल। और साड़ियों का संसार, इसमें जब हम अंदर होंगे तो बात होगी कोटा की साड़ी, तो बहुत फेमस है कोटा डोरिया उसके बारे में।
1: बिल्कुल, ऐसी साड़ी है ये जिसे हर माहौल में पहना जा सकता है और राजस्थान में तो इसकी बहुत ही मतलब भरमार है साड़ी की, और हर लगभग औरत के पास कोटा डोरी की साड़ी तो मिलेगी आपको। बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें महिलाएं जो है कोटा डोरिया की साड़ी पहने हुए भी मिलती है, और कुछ महिलाएं ऐसी है चंचल जो सिर्फ कोटा डोरिया ही पहनती है।
0: तो हमारी कौन सी सखियां जिनके वार्डरोब में ये साड़ी जरूर है और उन्होंने क्यों खरीदी या उन्हें ये क्यों पसंद है, और जिन्होंने नहीं खरीदी है वो अब चाहती हैं कि उनकी वार्डरोब में ये साड़ी आ जाए, तो वो क्यों चाहती है ये जरूर हमें बताएं। इसके अलावा आज चावल के कुछ व्यंजन हम चाहेंगे कि हमारी सखियां हम तक भेजें।
1: अच्छा।
0: इसमें चावल की तो बहुत अच्छी चीजें होती है, नी डोसा होता है अनार से जो है खास अवसरों पर बनाया जाता है, चावल के कई तरह के पापड़ भी बनाए जाते हैं, इसमें कुछ कच्चे चावल के होते हैं कुछ पकाए हुए चावल के भी होते हैं। तो पके या कच्चे जिस भी तरह की चीजें आप चावल की बनाती हैं वो रेसिपीज हमारे साथ साझा करें। फिलहाल हम साझा करते हैं अपनी सखियों के साथ में एक खूबसूरत सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: जी, तो गाना बड़ा अच्छा था, है ना?
1: बहुत सुंदर, इसलिए आपसे आज शिकायत कम करेंगे और चंचल आपको शुक्रिया अदा करूंगी मैं अच्छे गाने सुनवाने के लिए।
0: तो भाई एक बड़ा सुंदर सा संदेश है, इसमें किसी हमारे विषय से जुड़ी बात नहीं है, लेकिन यूं ही हमारी सखी ने लिखा है कि रेडियो की मधुर तरंगों पर जब शब्दों के फूल खिलते हैं, चंचल जी प्यारी बातों से मन के आंगन में रंग मिलते हैं।
1: क्या बात,
0: मंदाकिनी जी की मुस्कान में अपनापन सा झलकता है, उनकी मीठी आवाज सुनकर हर श्रोता का दिल महकता है। सखी सहेली केवल कार्यक्रम नहीं, रिश्तों की एक सुंदर डोरी है, ज्ञान मनोरंजन का अपनापन जिसकी हर बात बड़ी ही प्यारी है। यूं ही गूंजती रहे ये आवाजें, खुशियों का संदेश सुनाती रहें, चंचल जी और मंदाकिनी जी के संग सखी सहेली यूं ही मुस्कुराती रहें।
1: क्या बात है, क्या बात है, यानी हमारी सखियों को, हमारी सखाओं को हमारी मुस्कुराहट भी यहाँ से दिख जाती है ना?
0: और ये जो सुनकर जो देखना होता है ना, ये कई बार हम गानों में भी महसूस करते हैं कि किस तरह के जो भाव हैं और गायक जिस तरह से गाते हैं, हम उसे पूरा महसूस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, चाहे हमने वो चलचित्र ना देखा हो,
1: बिल्कुल
0: वो भाव जिस तरह से चल रहे होंगे अपने दिमाग में एक चित्र हम बना लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और उद्घोषक जो खासतौर से जब प्रोग्राम प्रेजेंट करता है तो हमारे श्रोता एक पिक्चर बना के चलते हैं कि भाई चंचल जो है कैसी दिखती होंगी, चंचल लगती है कि नहीं, और मंदाकिनी जी कैसी लगती है, मुस्कुराकर बात कर रही है कि नहीं, उनकी एक पिक्चर चलती है और वो उसी हिसाब से सोचते भी, और हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता उस पिक्चर में हमारी सूरत देखते हैं, बोलने का अंदाज देखते हैं, तरीका देखते हैं। तो चलिए अभी शिकायत करेंगे हमारे श्रोता की, दोनों सखियां अपनी तारीफों में उलझ गई हैं, है ना? तो अगर हम अपने जीवन में चंचल ये मूल मंत्र अपना लें कि बात बात पर हम शिकायत नहीं करें बल्कि हर बात के लिए शुक्रिया अदा करें, तो शायद कहते हैं जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। और जिंदगी में हमें शिकायत नहीं, कहते हैं शुक्रिया ज्यादा अदा करना चाहिए, हमें दूसरों से तारीफ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और संसार की 90% समस्याएं बातचीत के असंतुलित लहजे से ही पैदा होती है।
0: बिल्कुल सही बात है, हमने बात को जिस तरीके से कहा अगर वो उसी तरह से सामने वाले तक पहुंची तब तो ठीक, अगर शब्दों का थोड़ा भी हेर फिर उन्होंने अपने तरह से सोच लिया तो बात का पूरे मायने ही बदल जाते हैं। और ये जो आपने कहा ना असंतुलित लहजा जो है, इसी से फिर सारी शिकायतें पैदा हो जाती है। और किसी ने कहा भी है कि हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, लहजे के फर्क से इसे तलवार ना बनाओ।
1: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा, अगर आप गुलाब की तरह अपनी बात कहते हैं तो वो वैसे ही पहुंचेगी, और अगर उसे तलवार बना देते हैं तो फिर वो तलवार की तरह ही अगले को जो है कलम करने की।
0: तो हमारी जो श्रोता हैं उनके शब्दों के तलवार ना चले, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतों के दफ्तर में अब ताला लगा दिया है, जो मिला है झोली में उसे गले से लगा लिया है, गिले शिकवे करने से बस दिल भारी होता है, और शुक्राना करने से हर लम्हा प्यारा होता है।
1: क्या बात, क्या है? बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम शुक्रिया ज्यादा, अब यही जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, प्यास अगर लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की महक से ही तो महकता है जमाना। क्या बात है, हमारे सभी सखियों और सखा तो भी बन गए हैं, मुझे लगता है शायर बन गए हैं, है ना?
0: और इसी के आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और हम शुक्रिया तो अदा ही नहीं करते, हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। हालांकि मैं इस बात को मान रही हूँ, संतोष

0: में रहना बहुत मुश्किल है। आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन हम अगर खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश रह सकते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं होता। और ऐसा ही करें कि छोटी छोटी बातों में शिकायत करने की जो आदत है, उसके पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उसकी वाली इतनी अच्छी है, हमारी वाली इतनी अच्छी नहीं है, ये चीजें हमारे जीवन को मुश्किल और तनाव से भरा हुआ बना देती हैं। इसीलिए हम खुद तो तनाव में इसे हम खुश तनाव में आते ही हैं, खुश नहीं रहते। लेकिन हम शिकायत करने से हमारा जो जीवन के प्रति नजरिया है वो भी खराब होता जा रहा है। तो जारी है कि शिकायतें ना करें, जो है उसमें खुश रहें, आपके पास जो मिला है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, और भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, शिकायत करना बंद कर दीजिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा, हम अक्सर करते हैं छोटी छोटी बातों पर शिकायत। अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। हालांकि मैं मान रही हूँ कि संतोष रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं, बस ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही करें, जो छोटी मोटी बातों में शिकायत करने की आदत है उसके पास ये है कि हमारे पास नहीं है, ये हमें खुद ही दुखदायी बना देता है। और बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं ना चंचल, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाता है। और इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति में बड़ों को प्रणाम करना सिखाया जाता है और दूसरों का आभार व्यक्त करना बहुत जो है अच्छा होता है, और हमें दूसरों से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, और दुआओं के लेन देन से हमारी सफलता का जो है मार्ग प्रशस्त होता है।
0: अब हमारे श्रोता कहीं ये शिकायत ना करते कि भाई गाना नहीं सुनवा रही है सखी, सिर्फ बातें किए जा रही है, तो बातें भी करेंगे, संदेश भी पढ़ेंगे गाना सुनने के बाद।
1: चलिए

0: चल, भूलना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है तो उसका शुक्रिया हमें हर हालत में अदा करना चाहिए, और किसी से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उसका आभार व्यक्त कर दें। आभार और क्षमादान कहते हैं हमारे जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। आभार या शुक्रिया करने का मतलब है उसकी कद्र करना, यानी हम दूसरे का आदर तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनके प्रति स्वीकार्यता का भाव होगा, हम स्वीकार करेंगे उनकी सहायता को उनको। तो जब जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच जागृत हो जाती है।
1: और इसी तरह से जो शिकायत का भाव है वो एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नकारात्मक हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी तो शिकायत मन में आती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं कि भगवान या किसी भी उच्च शक्ति से शिकायत करने की बजाय शुक्रिया या कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा भी आप भी बता रही थी, कृतज्ञता का अभ्यास करने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तनाव कम होता है। शुक्रिया अदा करने से आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके पास है, न कि उनके पास जो आपके पास नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: शिकायत उस आम आदमी से भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया और उससे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी कि हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही अच्छा।
0: हाँ, यानी भगवान को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा, ये हमारे जीवन का मोटो हो तो हम परेशान नहीं होते, लेकिन ऐसा हमसे हो नहीं पाता। हम समाज और परिवार से शिकायत ही रखते हैं, इसकी जड़ में नहीं जाते, जिसका कारण हम खुद ही हैं। हमें बचपन से शिकायत मिलती है, हम बड़े होकर भी वही करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिकायत की भावना की जगह सहयोग की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए।
1: इसी तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो शिकायत और शुक्रिया वाली बात है ये सुखमय जीवन का मूल मंत्र है, और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायतें दर्ज करवाने की इस आदत अगर पड़ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और शुक्रिया अदा करने पर तो कोई लोग भी अगर शुक्रगुजार होते हैं तो उसे हम नेक और भला आदमी मानने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाले अपने आप में कमजोर होते जाते हैं, जबकि शुक्रिया अदा करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा करना चाहिए। भाई ये तो सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायत जो दर्ज करवाते हैं उनको आदत हो जाती है कि हर वक्त वो शिकायत ही करते रहते हैं, और शुक्रिया अदा करने वाले तो जो लोग हैं वो तो भाई शुक्रिया ही अदा करेंगे और उसे नेक और भला आदमी हम मानते भी हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाला खुद ही

0: जो है कमजोर होता जाता है।
1: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं कि अब यही है जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, अगर प्यास लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों सी महक फूलों की से हो तो महकता है जमाना।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता ने लिखा है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी धर्म पत्नी हमेशा माता रानी और प्रभु परमेश्वर का शुक्राना ही अदा करते हैं, क्योंकि देने वाली तो माता रानी ही है जो हमें देती है, और जो हमें देना चाहिए जो भी वो उन्हें मालूम होता है, तो शिकायत किस बात की। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और हमारे जीवन में भी हम दोनों शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करते हैं। ये भी हमने बच्चों को सिखाया है हर बार लघु कथाओं के माध्यम से। ज्यादातर मेरी धर्मपत्नी और मुझे जब भी समय मिलता है बच्चों को बताकर और समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लगातार शिकायत करने से हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं, जिससे तनाव और मानसिक थकान बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, जब हम शुक्रिया धन्यवाद भाव देते हैं तो हमारा दिमाग जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर आकर्षित होने लगता है।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि शिकायत दूरियां बढ़ाती है रिश्तों में, जबकि शुक्रिया का एक छोटा सा शब्द दिलों को करीब ले आता है। किसी की मदद के लिए धन्यवाद कहना, माता पिता के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करना और मित्रों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर बना देती हैं।
0: बिल्कुल बना देती हैं। लेकिन एक श्रोता का मैं और विचार लेना चाहूंगी, ये लिखते हैं कि किसी बात पर निश्चित सकारात्मक भरोसा या तसल्ली देना यानी आश्वासन। जीवन में आश्वासन मिलने पर मानसिक शांति और काम को प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ये वचन चंदन सी शीतलता देता है। खोखले और झूठी बातें बिल्कुल करना गलत बात है, बार ऐसा करने से समाज में हमारी कीमत कम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे आश्वासन देने चाहिए।
1: तो अभी गीत सुन ले।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
0: जी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश और उनकी बातें।
0: बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में, है ना। तो कोटा डोरिया साड़ी जो है चंचल राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक हथकरघा यानी हैंडलूम साड़ियों में से एक मानी जाती है। कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों में बने हुए हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, पारदर्शिता और चौकोर डिजाइन जिसे खट कहा जाता है उसके कारण देश भर में प्रसिद्ध है।
2: ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई राजस्थान की तो बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है और कोटा डोरिया का जो इतिहास है ना इस साड़ी का, ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब करीब 300 साल पुराना रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है मंदाकिनी जी कि 17वीं 18वीं जो शताब्दी थी उसमें राजस्थान राज्य के कोटा के महाराव ने दक्षिण भारत के जो खास तौर पर जो मैसूर क्षेत्र है ना वहाँ के कुशल जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनको कोटा बुलाया और इन बुनकरों ने वहाँ के जो स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर एक नई बुनाई तकनीक का विकास किया जिसमें सूती और रेशमी धागों को मिला जुला कर कुछ इस्तेमाल किया गया था। और हाथ से बुना गया जो आरामदायक कपड़ा था इसमें बहुत चमक भी होती है और इस विशेष बुनाई से बनने वाले जो चौकोर जाल जैसे पैटर्न बनते हैं जिन्हें खट कहा जाता है आपने बताया, और कोटा डोरिया की ये पहचान बन गया।
0: बिल्कुल सही कहा चंचल, और कोटा डोरिया नाम कैसे पड़ा ये भी एक बहुत ही रोचक बात है कि कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ ये कला विकसित हुई और डोरिया का मतलब है डोरा यानी धागा।

0: कोटा मसूरिया ऐसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं। और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि बहुत ही हल्की फुल्की और आरामदायक होती हैं। सूती और रेशमी धागों का सुंदर मिश्रण होने के कारण वैसे तो किसी भी मौसम में इन्हें पहन सकते हैं, लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बड़ा उपयोगी माना जाता है इन्हें पहनने के लिए। और राजस्थान जहाँ की गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई होती है तो वहाँ की महिलाएं इसीलिए शायद इसे ज्यादा पसंद करती
1: हैं। बिल्कुल सही कहा। और वहाँ जो लड़कियां हैं वो भी कोटा डोरिया के सूट भी पहनती हैं ताकि गर्मी का जो मौसम है वो आराम से निकल जाए।
0: और जब कोई साड़ी बहुत प्रचलित होती है ना उसके दुपट्टे भी चल जाते हैं।
1: हाँ, कोटा डोरिया के दुपट्टे भी बहुत प्रचलित हैं और बहुत सुंदर होते हैं लाइट शेड के सारे, जो हल्का रंग पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत खूबसूरत।
0: आजकल एक फैशन और भी है कि जब कोई खास समारोह होते हैं तो जब कुर्ता पायजामा पुरुष पहनते हैं तो उन पर भी दुपट्टा डालने का चलन है, तो जैसे और जो चीजें ना बांधनी के डाले जाते हैं तो वहाँ कोटा डोरिया का दुपट्टा भी
1: डाला जाता है और बहुत सुंदर लगता है पुरुषों के साथ में साइड में रखा हुआ ये जो कोटा डोरिया का दुपट्टा है ये भी चार चांद लगाता है उनकी खूबसूरती में। और जालीदार बुनाई होती है इसकी बहुत हल्की, लगभग 250 से लगभग 400 ग्राम और ये बहुत हवादार होता है, जो हमारे अभी आपने कहा कि गर्मियों में पहनने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। ताना और बाना की खास बुनाई के कारण इस पर छोटे छोटे चौकोर खाने बनाए जाते हैं जिसे खट अभी आपने बताया खट कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है, हाथ से बुनी होने के कारण हर एक साड़ी अपनी अलग सुंदरता लिए होती है।
0: और जितनी भी हैंडलूम या हथकरघा की साड़ियां हैं ना वाकई में वो बड़ी प्यारी लगती हैं देखने में भी और पहनने में भी। और इस तरह से एक साड़ी को जब बनाया जाता है तो बनाने में डिजाइन के अनुसार करीब 10 दिन से लेकर 3 महीने भी लग जाते हैं। कई भी होते हैं ना बहुत
1: बारीक काम होता है और थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें टाइम लगता ही है।
0: और अपनी शुद्धता और कारीगरी के कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल, और इसे हल्के में भी मिलती है, आप आम स्त्री भी इसे खरीद सकती है और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा डोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है। इसे असली कोटा डोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती भी है।
0: कोटा के पास एक जगह है, छोटी सी कस्बा है कैथून, जहां पर कोटा डोरिया साड़ियां ज्यादा बनाई जाती है, वहीं इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां पर ये साड़ियां बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी।
1: बिल्कुल,
0: और राजस्थान के हस्तशिल्प की कोई ये वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।
1: बिल्कुल, और चंचल हमने तो ये भी देखा है बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं ना कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है, बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये, बहुत ही अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, पारंपरिक बुनाई की एक कला है और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट, आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
0: तो भाई क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है तो जहाँ बारिश नहीं है गर्मी है वहाँ के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुँचा दी जाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो चंचल, बात चल रही थी
3: कोटा डोरिया साड़ी के लिए और इस बारे में हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही शानदार लगती है।
2: क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
3: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं हो।
2: हाँ, यानी आपने आश्वासन दे दिया उनको।
3: और आश्वासन को लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें, जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस कहते हैं, इसका सरल अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना, ये कहना कि चिंता करने की जरूरत

0: नहीं है, सब ठीक हो जाएगा या उसकी सहायता की जाएगी या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है या असमंजस में होता है, तब उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं, तो ये एक आश्वासन है।
0: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के तीन शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल, और देखा आपने चंचल की जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे शिक्षक, वो अपने छात्रों को यानी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है उसके परिवार को कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
0: ये जो आपने तीन उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का, एक चिकित्सक का और एक माता पिता का, सही बात है, ये आश्वासन अगर मैं ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं। अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का
1: क्या होगा और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें तो सोचो क्या हो एक बच्चे की जिंदगी। लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
0: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन भरोसा या पक्का विश्वास दिलाना है, किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा, विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है तुम निश्चिंत रहो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं भाई आपका ये काम मैं कर दूंगी, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रग को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
0: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
1: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को ढांढस बंधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे दिल से आए और हमारे कर्म में बदल जाएं। ऐसे बहुत से कम लोग हैं चंचल, है ना,
0: सही कहा,
1: और करने में फर्क हो जाता है।
0: हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका साथ आप कभी ना छोड़ें। आगे एक संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन शब्द की सार्थकता उसकी प्रामाणिकता में है। यदि इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और प्रयास करने की नीयत है तो ये संजीवनी की तरह काम करता है, लेकिन यदि ये केवल एक जिम्मेदारियों से बचने का जरिया मात्र बनकर रह जाए तो मानसिक चोट भी पहुंचाता है। यानी आश्वासन देने से पहले अपनी क्षमता और नियत को टटोलना बेहद ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि आत्ममंथन आत्मनिरीक्षण करते हुए ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही जो है ये भी देखना चाहिए कि हमने किसे आश्वासन दिया है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, ये जो कहावत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
0: चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो रुकिए तो कहा है लता मंगेशकर जी ने, लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब बात आ गई व्यंजन पर। चंचल क्या बनाने वाली हो?
1: बहुत सारी रेसिपीज आई हैं।
0: देखिए बरसात के दिनों में एक रेसिपी हमें इतनी खास अच्छी मिली है कि बिहार झारखंड में अनरसे के साथ साथ ये व्यंजन खूब बनाया जाता है। ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, खिरौरी दुधौरी। क्या नाम है? खिरौरी दुधौरी। इस नाम के अनुसार ही चावल को दूध चीनी के साथ पका लेते हैं। चावल इतना पकाना है कि वो आपके हाथ से दब जाए और दूध भी सूख जाए, ठंडा हो जाए, और उसे किसी बर्तन की सहायता से खूब मसल के डो के रूप में कर लीजिए। हाथ में थोड़ा घी लगाने के बाद गुलाब जामुन जैसा शेप बना लीजिए और तेज आँच में घी या तेल में इसे सुनहरा तल लीजिए। अगर आपको इसे सूखा खाना है तो इसे आप डार्क ब्राउन तल लें, और अगर चाशनी में डालना है तो इसे हल्का गुलाबी सेक लें। गुलाब जामुन की तरह हल्के चाशनी में खिरौरी को कुछ देर डूबा रख दे, ये गुलाब जामुन की तरह ही स्वादिष्ट लगेगा और सूखा वाला भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से कुरकुरे और बेहद सॉफ्ट। ध्यान रहे इसे बहुत नहीं मसलना है, इसे हाथों से मसलें, उसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने चाहिए। सूखा वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें तो चाशनी वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर दें। आँच धीमा पर तलने में तेल पिएंगे और तेल में बिखर भी जाएंगे, इसका ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल, और एक बड़ी अच्छी रेसिपी हमारे पास आई है और इसमें हमारे श्रोता ने बताया है कि कच्चे चावल से झटपट और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए एक कप चावल को धोकर एक घंटा भिगोएं, पानी को निथार कर चावल, दो चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे मिक्सी में पीस लें। इसमें आधा कप सूजी और कटी हुई सब्जियां जिसमें प्याज, गाजर, अन्य सब्जियां भी आप डाल सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें। कच्चे चावल और आलू का चटपटा नाश्ता तैयार करने के लिए ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।
0: बिल्कुल।

0: जी, और अब तो ये आश्वासन हम भी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं कि उनके लिए हम बहुत कुछ है और श्रोता हमारे लिए बहुत कुछ है,
1: बहुत बड़ा सहारा है हमारे प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाने के लिए।
0: बिल्कुल, लेकिन अब वक्त जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा कि इससे कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए और बातचीत की जाए। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: आज हम बात कर रहे हैं आपकी साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राढ़ी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
2: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
1: जी।
2: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित मंद है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित्य है जिसमें, मिठास है जिसमें।
1: जी, जी।
2: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है।
1: जी।
2: व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
1: जी, बिल्कुल।
2: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं खुद नहीं जान पाता हूं कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूं, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीजें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
1: जी।
2: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मुझे अपना बचपन और गांव बहुत याद आता है, वहां की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
1: जी।
2: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल,
2: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है, मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूं, और वहां पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहां मुझे संस्कृत का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूँ, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूँ, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूँ मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूँ। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से। उसकी बड़ी रोचक कहानी है
1: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
2: जी
1: कैसे प्रभावित कर लेता है।
2: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं। एक तो है कुल्हड़ की चाय, पहला, जो कि NBT से, राष्ट्रीय पुस्तक से छपा है
1: जी,
2: और दूसरा है नयन अरुबानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाज आई है, यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
1: जी।
2: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है, वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है, और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं क्या कहूंगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का जैसा उसको कहते हैं व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरूप हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है और जहां भी संगतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है। तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है
1: जी। तो व्यंग का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में
2: आ जाता है।
1: तो ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
2: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भेष पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूँ, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा। इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा रहा है, जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते।
1: जी, जी।
2: हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है।
1: हाँ।
2: ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-3,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहां तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
2: जी जरूर, उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात।
2: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नजर आता है। आप किस यात्रा में कहां कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पलवित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं, तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था, उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे। कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूं, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास, तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूँ ना, मैं वहां जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
0: जी,
1: और
0: जी।
1: मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहां से यात्रा और कहां से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिशारिकाएं जाती हैं कैसे।

0: आती है बादल से क्या कहते हैं, कालिदास का विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है और वो मुझे वहीं जाकर के मिला।
1: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
0: जी, जी।
1: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी, उसकी समीक्षा मैं पढ़ रही थी और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
0: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन और बानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है। गिरा नयन नयन बिनु बानी, ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिरुबानी, कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो भले करें कि गिरा अनयन नयन बिनबानी, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नयन बिनबानी नहीं है, नयन और बानी है। और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीजें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार, या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है।
1: जी।
0: तो नयन प्रेम के प्रतीक हैं। ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिनुबानी। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उसे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
1: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब जाकर एक इतनी बड़ी बात कही जाती है। तो राडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
0: जी, मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं। बड़ी मस्त आवाज उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है आयाराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
1: जी।
0: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूंगा।
1: आइए सुनते हैं।

0: किया इशारा।
1: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
2: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
1: जी,
2: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
1: जी।
2: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीजें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि ये हृदय पक्ष है, इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
1: अच्छा
2: जी, पढ़ते हैं लोग। मैं अपने बारे में नहीं कहता, मेरी कुल्हड़ की चाय
1: जी
2: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
1: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
2: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है
1: जी,
2: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है
1: जी।
2: एक दिन मैं, एक सब्जी होती कुंदरू,
1: कुंदरू की,
2: उसे मैं लाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास मेरे प्रिय है। मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूत में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं वो, बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती है पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं, तो वो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है
1: जी।
2: तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबा धरोष्ठी
1: जी,
2: मध्य क्षामा चकित हरडी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबा धरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान
1: जी।
2: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई, और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी, और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के छंद को पढ़े होंगे, वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को, और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को
1: जी।
2: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ
1: जी।
2: तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की

0: कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था। तो वहां से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, 3 कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया, लिखा नहीं व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीजें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आयातित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी तो जब ये मृद भांडे निकलेंगे तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहाँ से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित मत अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहां से फिर मैं ललित मत की लाइन में आ गया। और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज्यादा प्रिय है या ललित मत।
1: जी, आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह के निबंध छपते हैं तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
0: ये
1: हम समझ सकते हैं।
0: जी,
1: तो एक गीत हो जाए पहले।
0: जी हाँ बिल्कुल, मुझे एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे पगला कहीं का।
1: क्या बात
0: जी,
1: है फिल्म पगला कहीं का ये गीत हम सुनते हैं, और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात कर पाएंगे।
0: जी, हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा।

0: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं उसे जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
1: जी
0: को लेकर
1: जी
0: आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
1: जी जी जी मुंतागिरी जी, इससे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
0: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के।
1: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है, तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था, लेकिन व्यंगार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से थे नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो। 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई, मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
0: जी।
1: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूँ मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है, उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाऊं, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
0: अच्छा,
1: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
0: जी
1: गोलोकवासी हुए अभी 31 अक्टूबर को
0: जी।
1: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
0: जी।
1: तो कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए, और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
0: क्या बात है।
1: और उसके बाद ऊपर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने स्वीकृत दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका संपादन मैंने किया
0: जी।
1: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेषांक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
0: क्या बात है।
1: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकाली है। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी, उनकी उस समय उम्र हो गई थी और ज़्यादा, करीब करीब मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी तैयारी हमने फ़ोन पर की, क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था
0: जी।
1: तो विशेषांक निकला 120 पेज का, तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान

0: जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गजा यूं ही सर धीरे धीरे। गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोया, गजा दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
1: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है
0: जी, कि
1: लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ
0: जी। 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़कर के हर विधा में लिखने वाले। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं
1: जी।
0: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है।
1: बिल्कुल। तो रायडी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं। कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: जी जी हाँ, ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार

0: मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन वो सब कविताओं पर मिले। चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में
1: जी।
0: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है, और मंदाकिनी जी मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदन्ति। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है, और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियां, चाहे वो विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती हैं। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं, वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
1: जी।
0: और उनका एक उपन्यास है पानी के प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने जमाने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
1: बिल्कुल,
0: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही है।
1: जी बिल्कुल। प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो ये संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
0: जी।
1: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा कि संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
0: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे, उनका ना होना हमें बहुत खलता है, खैर ये प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिश्र जी में भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे, लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकारिक भाषा में चमचागिरी कहते हैं यह शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली, और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था, तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के, साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं
1: जी,
0: कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहाँ तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते हैं, तो वाकई वो माता की ही अवतार थी। इतने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए, खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा।
1: अच्छा।
0: उनकी पुत्र वधू ने लिखा, उनकी बेटी स्मिता जी हैं, वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कहा कि लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ, छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते हैं और वो इतने महान होकर के अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
1: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
0: जी,
1: हैं
0: जी, हाँ, जी,
1: उसके बाद
0: जी,
1: आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं
0: जी। मंदाकिनी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
1: जी।
0: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम
1: मेरा
0: गीत अमर कर दो, ये मुझे बहुत पसंद है
1: बहुत सुंदर
0: जी, इसे सुनना चाहूंगा मैं।

0: खाड़ी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है वो आपको कैसी लगी? मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
1: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं वो आंखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीज़ें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज़्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम हैं, मुझे लगता है कि अस्थाई नहीं है। पुस्तकें अस्थाई हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूं और पक्षधर हूं कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा। पुस्तकें थी, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं। ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीजें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थायी चीज है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज़्यादा साबित करेंगी। ये हमेशा रहेंगी। उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है ये।
1: जी
0: बिल्कुल सही कहा। और आपने प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है और लाल हथेलियां के नाम के माध्यम से, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
1: जी, असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है। ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी संग्रह आते गए। मिश्र जी की कहानियाँ नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषय, उनका बड़ा व्यापक रहा है
0: जी।
1: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आज़ादी के बाद यह माना जाने लगा था और सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे, हम विकास नहीं कर सकते। और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे, उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्शी कहानियां लिखें, स्त्री को आगे ले आएं, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएं। यह दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खासकर के स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियां वाकई नायिकाएं हैं, वो योद्धा हैं। और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है। जैसे उनकी कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है और उसकी बड़ी निंदा होती है। लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है? कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वो भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उनकी नायिकाएं आप देखेंगी, उनकी जो पात्र हैं, वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं, उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों की मोहताज नहीं है। इस चीज़ को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री प्रेरणा लेती है और पुरुष कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति देता है और इस तरह से वो सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्त्री इतनी आगे है, उसमें साहित्यकारों का योगदान है और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ।
0: जी बहुत सुंदर।
1: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं। उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था, कैसा क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ।
0: जी,
1: मैं मानता हूं कि जब तक मातृशक्ति, मातृसत्ता हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति ने तो ऐसे ऊपर बना के भेजा उसे, हमने उसे डोमिनेट कर दिया, तो उसको उसकी जगह चाहिए। तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था, क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियां लिखी हैं। तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनके तमाम संग्रह मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का और उसका मैंने संपादन किया और वो कहानियां आज लाल हथेलियों के नाम से वो
0: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी?
1: जी मुंदाके जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है। मतलब जब मेरे मन में कोई भाव ज्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ। मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी जबरदस्ती बैठ के कुछ लिखा हो। किसी संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया, उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित नहीं करवाया है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं। और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है। ललित निबंध है और गजलें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गजलों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ। बाकी गीत गजल हैं, ऐसी चीजें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य आ कहें, मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र भी कहते हैं कि जब से आप गद्य में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट जाएगा पीछे उसे मैं छोड़ दूंगा। मुझे आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने, पाठक के सामने ये चीजें आए तो सोचता ये हूं कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया, क्योंकि अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की सार्थकता होगी।
0: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आपका पसंद का और सुनना चाहेंगे हम।
1: हाँ, पहले मैं आपको अपनी पसंद का एक और गीत आपसे कह दूं। मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, बहुत सुनता रहा हूं मैं। उनका एक गीत है, ओहरे ताल मिले नदी के जल,
0: क्या बात है,
1: नदी मिले सागर से। ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हरिशंकर राडे जी, हम आपका विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहाँ मुंबई आए, हम लोगों से मिले और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर राडे साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राठी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 5 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नवीन विनिर्माण संयंत्र के भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण के तहत इंडोनेशिया की सफल यात्रा पूरी कर दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर उन्हें विदाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि शीघ्र ही लगभग 800 करोड़ की लागत से डेटा सेंटर में एआई, अत्याधुनिक तकनीकी एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकेथॉन 2026 का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के अंतर्गत संचालित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम छोर तक रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जाए और प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेला आयोजित कर रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त उत्कर्ष भार्गव और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल परीक्षाओं का दौर चल रहा है, आप भी किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहे होंगे। उम्मीद है कि आप मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के दौर में हमारी पढ़ाई में एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट की मदद से पूरा होता है, लेकिन दोस्तों इंटरनेट उपयोग करने की भी अपनी अलग चुनौतियां हैं। कई तरह के स्पैम, वायरस, गलत लिंक या मालवेयर सॉफ्टवेयर का भी सामना हमें इंटरनेट के उपयोग से करना पड़ता है। तो आज क्यों ना इसी टॉपिक पर बात करते हैं। आगे बात करने से पहले क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

दोस्तों, तकनीकी युग में मानव जीवन को नई गति दी है। इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने संवाद, शिक्षा और अभिव्यक्ति के अनगिनत अवसर उपलब्ध कराए हैं, किंतु इन सुविधाओं के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। उन्हीं में से एक है साइबर बुलिंग। दोस्तों, आज का युवा डिजिटल दुनिया का नागरिक है। उसकी पढ़ाई, दोस्ती, मनोरंजन

और बातचीत काफी हद तक इंटरनेट के माध्यम से होती है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए। तो दोस्तों आइए समझते हैं साइबर बुलिंग क्या है। साधारण शब्दों में इंटरनेट या डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके किसी व्यक्ति को बार बार अपमानित करना, धमकाना, उसका मजाक उड़ाना या उसकी निजी जानकारी का दुरुपयोग करना साइबर बुलिंग कहलाता है। दोस्तों इसके कई तरीके हैं, जैसे फर्जी प्रोफाइल बनाना, अपमानजनक टिप्पणियां करना, निजी तस्वीरें साझा करना, धमकी भरे संदेश भेजना, झूठी अफवाह फैलाना और किसी व्यक्ति का उपहास करना। दोस्तों पहले जहां उत्पीड़न केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित रहता था, वहीं आज इंटरनेट के कारण यह 24 घंटे कहीं भी संभव हो गया है। यही कारण है कि साइबर बुलिंग का प्रभाव अधिक गहरा होता है। हमारे शास्त्रों में सदैव संयमित वाणी और मर्यादित आचरण का संदेश दिया है। संत कबीर का यह दोहा आज भी उतना ही सार्थक है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। डिजिटल युग में भी यह शिक्षा हमारे लिए मार्गदर्शक है। दोस्तों साइबर बुलिंग केवल तकनीकी समस्या नहीं, यह सामाजिक, मानसिक और नैतिक चुनौती भी है। इसके प्रभाव व्यक्ति के आत्मविश्वास, शिक्षा और पारिवारिक जीवन तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि साइबर बुलिंग का युवाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों किसी के कठोर शब्दों का घाव दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका दर्द बहुत गहरा होता है। जब यही व्यवहार इंटरनेट के माध्यम से बार बार होता है तो उसका प्रभाव और भी गंभीर होता है। आज साइबर बुलिंग के कारण युवाओं में कई सारी समस्याएं देखी जा रही हैं और इसके कारण है तनाव और चिंता बढ़ सकती है, आत्मविश्वास की कमी आ सकती है, पढ़ाई और एकाग्रता प्रभावित हो सकती है तथा सामाजिक अलगाव की भावना भी हो सकती है। कई युवा अपनी परेशानी किसी से साझा नहीं करते, वे सोचते हैं कि शायद यह केवल मजाक है या फिर शिकायत करने से स्थिति और बिगड़ जाएगी। लेकिन याद रखिए, चुप्पी समाधान नहीं, जागरूकता ही सुरक्षा है। समस्या को स्वीकार करना और सहायता मांगना साहस का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। दोस्तों भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए अनेक कानूनी प्रावधान उपलब्ध हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, जो डिजिटल माध्यमों में होने वाले अपराधों पर नियंत्रण करता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत पहचान को छिपाना, धोखाधड़ी करना, अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार। यदि कोई युवा साइबर बुलिंग का शिकार हो जाए तो क्या करें? तो दोस्तों सबसे पहले घबराए नहीं। दूसरा, सभी डिजिटल प्रमाण सुरक्षित रखें, जैसे स्क्रीनशॉट, संदेश, ईमेल या प्रोफाइल लिंक। तीसरा, संबंधित प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट और ब्लॉक करें। चौथा, अपने माता पिता, शिक्षक या विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी दें और आवश्यकता पड़ने पर साइबर अपराध या साइबर सेल और पुलिस से संपर्क करें। दोस्तों भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी प्रदान करता है। तकनीक का सही उपयोग विकास का मार्ग बनता है और उसका दुरुपयोग समाज को पीड़ा देता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। कानून हमें सुरक्षा देता है, लेकिन समाज और परिवार हमें संस्कार देते हैं। जब दोनों साथ चलते हैं तभी सुरक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण होता है। दोस्तों इस तरह के साइबर अपराधों से लड़ने के तरीकों और इसके निराकरण पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी समय है एक प्यारे से गीत का।

दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस चुनौती का समाधान केवल कानून से नहीं बल्कि परिवार, विद्यालय और समाज के सामूहिक प्रयास से संभव है। परिवार बच्चे का पहला विद्यालय होता है। माता पिता यदि बच्चों के साथ खुलकर संवाद करें, उनकी ऑनलाइन गतिविधियों में रुचि लें और उन्हें सही गलत का विवेक सिखाएं, तो अनेक समस्याओं को प्रारंभ में ही रोका जा सकता है। बच्चों को यह विश्वास होना चाहिए कि किसी भी कठिन परिस्थिति में उनका परिवार उनके साथ है। विश्वास और संवाद, यही है सुरक्षित परिवार का आधार। दोस्तों, कोविड काल के बाद इंटरनेट का उपयोग बच्चों को भी करना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए आज आवश्यकता है कि विद्यालयों को साइबर सुरक्षा पर कार्यशालाएं आयोजित करना चाहिए। डिजिटल नैतिकताओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाना चाहिए तथा संवेदनशील और सम्मानजनक ऑनलाइन व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दोस्तों, हमें खुद भी यह याद रखना चाहिए कि हम किसी की निजता का सम्मान करें, बिना अनुमति के किसी की तस्वीर या वीडियो साझा न करें, अपमानजनक टिप्पणियों से बचें, फर्जी समाचारों को आगे न बढ़ाएं और यदि कोई साइबर बुलिंग का शिकार हो तो उसका सहयोग करें। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था, किसी समाज की महानता इस बात से आंकी जाती है कि वह अपने सबसे कमजोर और पीड़ित लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता। डिजिटल समाज भी इस सिद्धांत से अलग नहीं है। यदि हम इंटरनेट को सम्मान, सहानुभूति और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें तो तकनीक मानवता के विश्वास का सबसे बड़ा साधन बन सकती है। इसीलिए क्लिक करने से पहले सोचें, पोस्ट करने से पहले समझें और किसी को आहत करने से पहले स्वयं को उसकी जगह रखकर देखें। दोस्तों, तकनीक के इस युग में ज्ञान के साथ विवेक, अधिकारों के साथ कर्तव्य और स्वतंत्रता के साथ संवेदनशीलता का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, हम सब मिलकर एक ऐसा डिजिटल भारत बनाएं जहां प्रत्येक युवा सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करें।

दोस्तों, आशा है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको साइबर बुलिंग की समस्या, उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के महत्व के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम से विदा लेने का समय आ गया है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और डिजिटल दुनिया में जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ते रहें। हम कल नई बातों को और गीतों के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युवानी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ़, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता।

नाजिया हसन और साथियों की आवाज़ों में दीवर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत बिट्टू का था। आइए अब सुनते हैं जोहेब हसन की आवाज़ में इन दीवर और अमित खन्ना का लिखा ये गैर फिल्मी गीत। संगीत बिट्टू का।

0: किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: संगीत चरिता कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कृष्णा की आवाज में फैज अनवर का लिखा ये गैर फिल्मी गीत। संगीत कृष्णा का है।

कृष्णा और साथियों की आवाज़ों में फैज़ अनवर का लिखा ये गैर फिल्मी गीत अभी आपने सुना। संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं शान की आवाज़ में शाहरुख सुल्तान का लिखा ये गैर फिल्मी गीत। संगीत आनंद मिलिंद का है।

0: यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती हैं।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं तान्या और साथियों की आवाजों में रवि पवार का लिखा ये गैर फिल्मी गीत।

कन्या और साथियों की आवाज़ों में रफ़ी पवार का लिखा ये गैर फिल्मी गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी सागर है।

सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।

है। 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
1: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रोबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाश।

समाचारों के बाद आप सभी विविध भारती सुनने वालों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है कार्यक्रम तराने नए पुराने में। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है उदित नारायण और साधना सरगम ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

सूरज फिल्म से ये गीत है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। हर्षित जयपुरी ने इस गीत को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आपको सुनवा रहे हैं फिल्म खामोशी का ये गीत, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू ने। मजनू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, जतिन ललित का ही संगीत।

0: सितारा फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर भूपिंदर की आवाजों में, गुलजार के बोल थे और आरजी बर्मन ने इसकी धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत।
1: तराने नए पुराने
0: फिल्म का नाम है चलते चलते, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, तर्ज जतिन ललित की।

अर्पण फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम तराने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:30 हुए हैं। पेश हैं सदाबहार गीत।

जरा सी जिंदगी। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए अब सुनते हैं हीरो फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

हीरो फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

0: लोक रंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नत्थू सिंह से ये चेतावनी।
1: श्रोताओं, अन्य खबरों में कृषि और किसान।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लोक रंग कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं महेश कुमार अनुरागी से ये वर्षा गीत।

महेश कुमार अनुरागी से अभी आप सुन रहे थे ये लोक शैली पद वर्षा गीत। इस लोक गीत के साथ ही लोक रंग कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्त पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यह मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन के हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए निजी कंपनी और उसके संबंध इकाइयों में स्थानांतरित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 27 मार्च की मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। यह योजना खाड़ी देशों के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए थी जिनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण रद्द हो गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार और CBSE से जवाब मांगा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको जानकारी देते हैं आज के बाकी कार्यक्रमों की, साथ ही कल के मुख्य कार्यक्रमों की। शुरुआत करते हैं आज के बाकी कार्यक्रमों से। अब से कुछ ही देर में यानी 7:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से। लोकरंग कार्यक्रम 7:20 पर होगा। 7:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम होगा ग्राम सभा।

रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत संगीत सरिता कार्यक्रम का वक्त होगा 8:20। समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगी 8:45 से। 9 बजे सुनिएगा अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत, कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम 9:30 से मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से, 11:05 पर दिल्ली से ही अंग्रेजी में समाचार होंगे और 11:10 पर हमारा आज का प्रसारण संपन्न होगा। और अब एक नजर डालते हैं कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना, श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ 6:30 से, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 6:40 पर और रोजाना का क्रम सुबह सुबह 7 बजे से। कृषि संकेत का वक्त होगा 7:05, मनचाहे गीत 7:20 पर और संगीत सरिता 7:45 पर। लोक संगीत कार्यक्रम का वक्त होगा 8:15, 8:30 पर होगा भोपाल केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। फोन करें लोकगीत सुने का पुनः प्रसारण 10:05 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग सुबह 11 बजे से। शाम 5:02 पर होगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी, संगीत सरिता 5:30 पर, चित्रपट संगीत 6 बजे से और सतापहार गीत 6:30 से। लोक रंग कार्यक्रम 6:45 पर, 7:20 पर होगा खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8 बजे चित्रपट संगीत, संगीत सरिता 8:20 पर और मनचाहे गीत रात्रि 9 बजे से। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर। तो ये थी जानकारी आज और कल के कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार होंगे भोपाल केंद्र से थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा पूरी कर ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया। और दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो को लेकर की समीक्षा, कहा अच्छी बारिश से वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या घटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण के तहत इंडोनेशिया की सफल यात्रा पूरी कर दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो ने खुद एयरपोर्ट पर उन्हें विदाई दी। इस दौरे में ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल प्रणालियों से जुड़े रक्षा समझौते हुए, जिससे दोनों देशों के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने योग्याकार्ता स्थित करीब 1000 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना की और राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मिलकर मंदिर के पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव से अपने आध्यात्मिक जुड़ाव का जिक्र करते हुए वडनगर, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि केदारनाथ धाम, उज्जैन महाकाल लोक के बाद अब प्रम्बानन मंदिर के पुनर्निर्माण से जुड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। वे भुवनेश्वर में समुद्री मत्स्य संसाधनों से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ओयूटी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से जुड़े दस्तावेज का लोकार्पण भी होगा। इसके बाद वे नाइसर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह खोरधा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर बांध परियोजना की लागत को लेकर 3 दशक से लंबित विवाद सुलझ गया है, जिसके तहत अब मध्य प्रदेश गुजरात को 217 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश के सभी जिलों में छोटे आईटी पार्क विकसित करने के साथ ही डेटा सेंटर उन्नयन के लिए 800 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। वहीं उज्जैन के निकट डोंगला वेदशाला के विकास कार्यों के लिए 39 करोड़ रुपए और नमो हरित नगर योजना के तहत 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए से नगर वन विकसित करने का निर्णय भी लिया गया है।
1: पर्यावरण से संबंधित नई योजना बनाई जा रही है, वह योजना है नमो हरित नगर योजना, जो हर नगर के अंदर नगर वन बनाने हैं पर्यावरण संतुलन के लिए। उसके लिए नमो हरित योजना में अगले 5 सालों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन बने, नगर वन जो बने, उन वनों में स्थापना के समय भी सीएसआर या स्थानीय जन भागीदारी की राशि जो मिलेगी उसका बराबरी का राशि राज्य सरकार वहन करेगी। तो प्रति वर्ष 5 सालों तक उनको मेंटेनेंस की राशि भी राज्य सरकार देगी।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुआंगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है।
2: इंडस्ट्रियों का एक तरह से ग्रोथ इंजन पूरे प्रदेश में माने तो वो धार जिला है। आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का लोकार्पण, दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत के अंदर ये सभी संभावना है जिसके आधार पर उसकी विकास दर बता रही, और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके वो सभी संभावनाओं पर काम कर रहा है जिसकी आज दरकार है।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां हर साल 6500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता होगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकेवेटर बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हवाई अड्डों की सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ ये बैठक की। श्री शाह ने सभी हवाई अड्डों पर स्वचालित एक्सरे ट्रे सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। एरो ब्रिज और बैगेज ड्रॉप सुविधा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 2027 तक सभी राज्यों में विदेशी पंजीकरण कार्यालय शुरू होंगे। अगरतला और जेवर हवाई अड्डों पर जल्द आवर्जन जांच चौकी शुरू करने को भी कहा गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन

0: AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में वर्षा की स्थिति पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के प्रभाव पर हुई समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने बताया कि जून में 33% बारिश की कमी थी, जो जुलाई में घटकर 24% रह गई है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 350 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल से कम है। मंत्री ने किसानों को मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम पानी वाली फसलें बोने की सलाह दी है।
2: अल नीनो के कारण जो कृषि की परिस्थितियां पैदा हो रही है, उस पर लगातार हमारी नजर है। अभी हाल में 3-4 दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, कई राज्यों में बारिश हुई है, और पहले जो 262 जिले कम बारिश वाले थे, उनकी संख्या घटकर 178 रह गई है। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह, क्योंकि अब देर हो जाएगी, तो मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम अवधि की फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: धार वन मंडल ने जनवरी से मई 2026 के बीच वन भूमि संरक्षण अभियान चलाकर करीब 590 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। सबसे ज्यादा जमीन बाघ परिक्षेत्र में छुड़ाई गई है, जिसके बाद धार, टांडा, मांडव, सरदारपुर, कुक्षी और धामनोद का नंबर आता है। इस मुक्त कराई गई जमीन पर अब सागौन के पौधे लगाकर पुनर्वनीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कामकाज की समीक्षा की। सीईओ आयुष्मान अरविंद कुमार शाह ने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 5,86,00,000 आभा आईडी बनाई जा चुकी हैं, जबकि लगभग 20,000 अस्पताल और 18,000 डॉक्टर नर्स डिजिटल रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। प्रदेश के 533 अस्पतालों में स्कैन एंड शेयर सुविधा से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा ओपीडी टोकन जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेला आयोजित कर रहा है। यह हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें विद्यार्थियों को एक ही जगह पर पंजीयन, च्वाइस फिलिंग, दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान जैसी सुविधाएं मिलेंगी। राजधानी भोपाल में दवा दुकानों पर सख्ती की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शहर के कई मेडिकल स्टोर्स की अचानक जांच की। जांच में गड़बड़ी मिलने पर 32 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है। बिना फार्मासिस्ट दवा बेचने वाले 2 स्टोर्स का लाइसेंस रद्द किया गया। डॉक्टर के पर्चे के बिना दवा बेचने पर 1 स्टोर का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। इसके अलावा 8 स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड कर 21 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है। भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र से 2 कैनो खिलाड़ियों का चयन हुआ है। एल नेहा देवी और हर्षवर्धन सिंह शक्तावत अब भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। दोनों खिलाड़ी 2026 ICF कैनो स्प्रिंट और पैरा कैनो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। ये प्रतियोगिता 9 से 12 जुलाई तक कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में होगी। कैनो स्प्रिंट एक रोमांचक और प्रतिस्पर्धी जल क्रीड़ा है, जिसमें एथलीट शांत या समतल पानी पर विशेष रूप से डिजाइन की गई नावों में एक सीधी रेखा में कम दूरी की रेस लगाते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा ने जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर सभी बेड पर बच्चों को भर्ती करने और फायर सेफ्टी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय शिक्षा दिवस पर भारतीय ज्ञान परंपरा एवं चरित्र निर्माण विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन नागानंद नाटक की पृष्ठभूमि और रस सिद्धांत पर व्याख्यान हुआ। देवास जिला चिकित्सालय में विश्व क्लब फुट माह के तहत जनजात पैर के तिरछेपन से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। आगरमालवा कलेक्टर ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान को गंभीरता और आपसी समन्वय से संचालित करने के निर्देश दिए। सीहोर में सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत आज बहरुंदा में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अशोकनगर में स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी में विद्यार्थियों को रोजगार परक और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए कई नवाचारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और झाबुआ में शासकीय विद्यालय पिपलिया पारा रोड और आंगनवाड़ी केंद्र का कलेक्टर ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

लोक रंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इंद्रपाल विश्वकर्मा से ये लोक भजन। आइए अब सुनते हैं सविता यादव से ये चेतावनी।

0: औकात।
1: सविता यादव की इसी चौकड़िया के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड पर यह आकाशवाणी सागर है। अगला कार्यक्रम भोपाल केंद्र से थोड़ी ही देर में।

0: भैया बहनों, सरकार हमें किसान भैया बहनों के कल्याण के लाने कई सारी योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भारत सरकार द्वारा साल 2007 में शुरू करी गई, इनमें से एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना है। इको मुख्य उद्देश्य है कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ा के कृषि को एक लाभकारी और आर्थिक गतिविधि बनावो और किसान की आय में वृद्धि सोई करवो है। और योजना राज्य को अपनी स्थानीय जलवायु आवश्यकताओं के अनुसार कृषि योजनाएं बनावे, लागू करवे की पूरी पूरी छूट देते है। इसके तहत फसल पूर्व और फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा जैसे के भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, बाजार के निर्माण पर जोर दो जाते हैं। केंद्र और राज्यन के बीच इको वित्त अनुपात 60 और 40 को होते है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यन के लाने 90 और 10 और केंद्र शासित प्रदेशन के लाने 100% होते है। इसे साल 2017 में RKVY रफ्तार के रूप में पुनर्गठित करो गो है, ताकि कृषि व्यवसाय नवाचार और युवा उद्यमियों को सोई बढ़ावा दो जा सके। सो जो तो हती जानकारी और अब अपन सुन लेते हैं जो देवी गीत बहादुर सिंह नरवरिया और संगी साथियों की आवाज में।
1: जय हो माता सरस्वती, तुम्हें नवामूसी।

0: भैया बेनाहरों खरीफ फसलों जैसे कि धान सोयाबीन मक्का की बुआई को जो समय है इसे भरपूर उत्पादन लेबे के लाने बुआई के समय अपन और रखो कई सारी छोटी छोटी बातन को ध्यान रखो बहुत ही जरूरी है और ई के लाने हमेशा प्रमाणित माने उन्नत किस्म के बीजन को चुनाव करवे बुआई से पहले बीजन को अंकुरण परीक्षण करवे फपून और कीटनाशक से बीज उपचार भी करवो जरूरी है लेकिन का है कि भैया बेनाहरों ई के लाने अपन को सही जानकारी और तकनीकें भी पता हो वो जरूरी है सो चलो ई के संबंध में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं सुनत है जो भेंट वार्ता खरीफ फसलों के उन्नत बीज एवं बुआई की विधियां विशेषज्ञ हैं डॉक्टर देवीदास पटेल इनसे बातचीत करी है राधा चौरे बैन ने
1: किसान भाइयों अच्छी पैदावार की नींव सही समय पर सही बीज के चयन और वैज्ञानिक तरीके से की गई बुआई पर ही निर्भर करती है यदि किसान उन्नत एवं प्रमाणिक बीजों का उपयोग करें और अनुशंसित विधि से बुआई करें तो कम लागत में भी बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि खरीफ का मौसम शुरू हो चुका है इसलिए आज हम भेंट वार्ता में इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे विषय है खरीफ फसलों के उन्नत बीज एवं बुआई की विधियां इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर देवीदास पटेल जी जो कि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर नर्मदापुरम में सर ग्राम सभा के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है
2: धन्यवाद मैडम
1: सर सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे आपकी आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि खरीफ मौसम की प्रमुख जो फसलें होती हैं कौन कौन सी होती हैं और इस समय किसान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें
2: बहुत अच्छी बात है खरीफ फसल में जो हमारे पास जो मुख्य फसलें हैं उसमें धान सोयाबीन अरहर और मक्का ये हमारी चार मुख्य फसलें हैं इसके अलावा जो श्री अन्य फसलें हैं उसमें कोदो कुटकी रागी सावा ज्वार और बाजरा ये प्रमुख रूप से हमारी श्री अन्न है जिसके अलावा कुछ क्षेत्रों में मिर्ची और कपास की खेती भी की जाती है
1: डॉक्टर देवीदास जी उन्नत जो बीज होते हैं उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे किसानों को हमेशा प्रमाणिक बीज ही क्यों खरीदना चाहिए और बीज खरीदते समय किसान किन किन बातों की जांच अवश्य करें
2: किसान भाई खरीफ फसलों की बात आती है तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है बीज अगर आप उचित अच्छा गुणवत्ता युक्त अगर बीज खरीदते हैं तो आपकी जो आदान सामग्री है जैसे खाद बीज खाद पानी और ये है उसका अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा तो हमें हमेशा उन्नत बीज ही खरीदना चाहिए उन्नत बीज ही क्यों जैसे हम जब अपने खेतों में बुआई करते हैं तो अगर हमने सही बीज का चयन किया है तो उसमें अंकुरण अच्छा आएगा फसल अच्छी आएगी उसमें जो आदर इनपुट्स हैं आदान सामग्री है उसका उचित उपयोग होके हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा हम देखते हैं कि बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि सस्ते बीज के चक्कर में कहीं ना कहीं से जो टीएल सीड होते हैं उसको खरीद लेते हैं और जब वो बुआई करते हैं तो कहीं ना कहीं जर्मिनेशन में दिक्कत आती है या फिर अच्छी प्लांट डेवलप नहीं हो पाते हैं तो सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि आप प्रमाणित बीज ही खरीदें और वो भी बीज आप प्रमाणित संस्थाओं से चाहे तो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से या NSC के माध्यम से या कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से ही आप प्रमाणित बीज का ही चयन करके उसकी बुआई करें इसकी गुणवत्ता जिस भौतिक गुणवत्ता और अनुवंशिक गुणवत्ता की गारंटी होती है अगर आप प्रमाणित बीज ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आप अगर प्रमाणित बीज खरीदते हैं तो आपके यहाँ फसल बहुत अच्छी होगी और हम कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं
1: जी डॉक्टर पटेल कई बार क्या होता है कि किसानों का खुद का भी बीज रखा होता है तो वो सोचते हैं कि जो अपना रखा हुआ बीज है उसको बोना चाहते हैं तो अगर वो अपना रखा हुआ बीज बो रहे हैं तो उस वक्त उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए
2: ये बहुत अच्छी बात है कि अगर किसान अपना ही बीज बोना चाहे तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है परंतु सबसे महत्वपूर्ण है बीज का अंकुरण अगर किसान अपने

0: घर पे रखा हुआ बीज उपयोग करना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले उसका अंकुरण परीक्षण कर ले। अंकुरण परीक्षण करना बहुत आसान है। आज एक नॉर्मल जैसा किसान है वो अपने जो बीज है उसको पहले तो अच्छा साफ सुथरा कर ले, क्लीन कर ले। क्लीन करने के बाद 100 दाने उसमें से निकाले, रेंडमली उसमें से 100 दाने निकाले, उसको चाहे तो सूती कपड़े में कपड़ा गीला करके 100 दाने गिनकर उसको फोल्ड करके रख दे ऐसे स्थान पर जहाँ का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जिसको हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। उस पर अगर रखता है तो 2 से 3 दिन में उस पर अंकुरण आ जाता है। अगर 100 दाने में से 80 दाने 85 दाने अगर जर्मिनेट होते हैं, मतलब धान के केस में 80 दाने के जर्मिनेट होते हैं तो वो बीज आपका सही है। सोयाबीन के केस में अगर 90 लगभग 70 दाने अगर ठीक जर्मिनेट हो रहे हैं तो वो बीज आपका अच्छा है। तो किसान भाई अगर जर्मिनेशन परसेंट अच्छा है उनके बीज का तो उसका भी वो बीज बुआई के लिए उपयोग कर सकते हैं। परंतु बीज भौतिक और आनुवंशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। बहुत से समय क्या होता है कि हमारे यहाँ मशीनरी ज्यादा के कारण हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग होती है तो कहीं ना कहीं बीज मिक्सिंग होता है।
1: जी।
0: तो किसान भाई अगर अपना बीज स्वयं का रख रहे हैं तो वो इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें कुछ किसी दूसरा अन्य वैरायटी का बीज मिक्सिंग ना हो।
1: जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बीज उपचार हम अक्सर सुनते हैं और वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है कि बीज उपचार बहुत जरूरी है, तो ये क्यों जरूरी है और अगर कोई करना चाह रहा है बीज उपचार तो कैसे किया जाता है और इससे किसानों को क्या लाभ मिलता है?
0: बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब हमारे यहाँ नवजात शिशु बच्चे होते हैं तो उसको हम टीका लगाते हैं।
1: जी जी जी।
0: तो जो हम फसल बो रहे हैं उसको भी अगर हम टीका लगाते हैं तो जो आने वाली बीमारियां हैं उससे हम अपने बीज को बचा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बीमारी 2 प्रकार से आती है, एक होती है बीज जनित बीमारियां और एक होती है मृदा जनित बीमारियां। इस बीज जनित और मृदा जनित बीमारी कीटों से फसल को सुरक्षित रखने के लिए बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार करने की विधियां अलग अलग है। जैसे हम बात करें तो जब बीज उपचार किया जाता है तो सबसे पहले हम करते हैं फफूंदी नाशक से।
1: जी जी।
0: फफूंदी नाशक के रूप में हम कार्बेंडाजाइम दवा ले सकते हैं, है ना, या अगर हम जैविक में करना चाह रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा वृडी ये ले सकते हैं। अगर हम केमिकल से कर रहे हैं, ट्राइकोडर्मा से कर रहे हैं, तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम उसको दवा को ले सकते हैं। अगर ट्राइकोडर्मा वृडी से कर रहे हैं तो 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम इस दवा को ले सकते हैं। पहले हम फफूंदीनाशक से करें, उसके बाद से बात करते हैं कीटनाशक से, जिसमें एमामेक्टिन बेंजोएट या थायोमिथाक्सान 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम बीज उपचार कर सकते हैं। और जो तीसरी दवा होती है वो होते हैं कल्चर, जैसे PSB हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पैरिलम हो गया, इनसे हम बीज उपचार कर सकते हैं 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। अगर हम सोयाबीन की बात करें उसमें राइजोबियम से भी बीज उपचार हम कर सकते हैं।
1: सर, धान की बात करें, सोयाबीन की, मक्का, उड़द या मूंग जैसी किसी भी प्रमुख हम खरीफ फसलों की बात करें तो इनकी बुआई का सही समय क्या होता है और उनकी जो उन्नत विधियां होती हैं उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे।
0: जी मैडम, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे किसान भाई बहुत परेशान होते हैं कि वो प्री मानसून ही सोइंग कर देते हैं। अभी बहुत से आप केसों में सोयाबीन की बुआई लोगों ने कर दी है, किसानों ने कर दी है और मेरे पास बहुत से फोन भी आ रहा है कि सर हमारी वो सोयाबीन जमी नहीं। तो जब तक हमारी 5 से 7 इंच बारिश ना हो जाए, है ना, 10 सेंटीमीटर तक बारिश ना हो जाए जब तक हमें बुआई नहीं करना चाहिए। अगर हम बुआई पहले करेंगे तो जमीन की क्या होती है, गर्मी निकल नहीं पाती और जिसके कारण थोड़े से बारिश हो रहे और अगर हमने बुआई कर दी तो उसमें आपका जो सीड है वो खराब हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि 12 से 15 इंच बारिश हो जाने दे, उसके बाद ही हम बुआई करें, है ना। उसके लिए सबसे अच्छा जो जून, अभी इस साल थोड़ा सा लेट हो रहा है तो जुलाई का फर्स्ट वीक बुआई के लिए उपयुक्त रहेगा क्योंकि जो बारिश आने वाली हो, मतलब 15 जून के आसपास आ रही है, तो 15 जून के पास आसपास ही हम उसकी बुआई करें।
1: पंद्रह जुलाई
0: के पास बुआई करें तो वो उपयुक्त रहेगा।
1: जी, जी, जी।
0: बात आप कर रहे हैं कि जैसे हमने अच्छी उन्नत किस्म का बीज भी ले लिया पर अधिक उत्पादन के लिए उसकी बुआई बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: अगर सही तरीके से अगर हम बुआई करते हैं तो उसमें हमारी लागत कम बीज में भी अच्छा हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आप सबसे पहले हम बात करते हैं धान की। तो अगर धान की बुआई, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है इसमें खरीफ में सबसे मुख्य फसल हमारी धान है, अगर हम सही तरीके से धान का बुआई करते हैं तो अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उपलब्ध जल, मौसम और संसाधनों के आधार पर हम अलग अलग प्रकार से हमारी धान की बुआई कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ब्लैक सॉइल हो, काली मिट्टी हो, जहाँ अधिक बारिश हो, उस क्षेत्रों में हम धान की जो विधि है उसमें हम ट्रांसप्लांटिंग के माध्यम से भी बुआई कर सकते हैं।
1: अगर हम बात करें कि कई बार पानी आ गया और आपने जैसे बताया मजदूरों की कमी है, तो आप इन इन विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर कहीं मानसून देर से आए, तो उस स्थिति में किसान भाइयों को क्या बुआई की योजना बनानी चाहिए?
0: अगर मानसून देर आता है और तो उस कंडीशन में हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि फसलों का चयन
1: जी,
0: अगर बहुत ज्यादा लेट हो रही है तो फिर हम श्री अन्न की ओर जाएं
1: जी,
0: है ना, क्योंकि धान के लिए अगर आप उचित समय पर बुआई करोगे तो आपको अच्छा प्रोडक्शन आएगा, क्योंकि उसको लगभग 120-125 दिन की ड्यूरेशन चाहिए। और अगर मानसून लेट आता है तो उस कंडीशन में हम धान की बजाय जो हमारे अन्य विकल्प है श्री अन्य कोदो कुटकी सावा, क्योंकि 70-75 दिन की फसलें हैं तो उस पे हमको शिफ्ट होना चाहिए, या फिर धान की जो ऐसी किस्में हैं जिन कम अवधि में पक के तैयार हो रही, जैसे JR 21, JR 206, जो JR 206 वो 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है, तो हमें उस वेरायटी की ओर जाना चाहिए। JR 21 110-115 दिन में पक के तैयार हो रही है, तो हमें इन वेरायटियों का सिलेक्शन उसमें करना चाहिए।
1: सर, सोयाबीन की बुआई के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, उसकी उन्नत विधि भी समझना चाहेंगे।
0: हमारे यहाँ की जो दूसरी महत्वपूर्ण फसल सोयाबीन है
1: जी,
0: और यह सोयाबीन बहुत सेंसिटिव फसल है, है ना, तो इसके लिए अगर हम उन्नत विधियों का अपनाते हैं तो सोयाबीन का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो दो वैसे तीन विधियां हैं, एक तो होती है डायरेक्ट सीडिल से बुआई। डायरेक्ट सीडिल से बुआई हम 40 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस रख के नॉर्मल अपनी जो सीड कम फर्टिलाइजर है उसके द्वारा हम बुआई करते हैं, परंतु जब पर्याप्त अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जब हम बुआई करते हैं सीडिल से तो कहीं ना कहीं पानी भरा जाएगा तो वो गलने की समस्या हो सकती है। इसके लिए दो बहुत अच्छी विधियां हैं, एक है ब्रॉड बेड फर्रो विधि, है ना। इसमें क्या होता है कि ब्रॉड बेड फर्रो प्लांटर एक इक्विपमेंट है, उसके माध्यम से हम अपने खेतों की तैयारी करते हैं। उसमें लगभग 1.2 से 1.5 मीटर चौड़ी ऊंची हुई क्यारियां बनती है और पानी निकलने के लिए साइट में 30 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 15 सेंटीमीटर ऊंची नालियां निकलती है।
1: जी जी।
0: तो अगर जब अधिक पानी होता है तो नालियों के माध्यम से पानी खेतों से बाहर जाएगा तो हमारी फसल उसमें सुरक्षित होगी। एक रिज एंड फर्रो मेथड है। रिज एंड फर्रो मेथड में लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंची और लगभग 2 फीट चौड़ी बेड बनाते हैं, उसके ऊपर 2 क्यारियों में हम सोयाबीन की बुआई करते हैं। इसमें भी वही फायदा है कि अगर जो हम नमी को संरक्षित कर सकते हैं और अधिक बारिश होती है तो पानी नलियों के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और जब हम 2 लाइन ही सोइंग कर रहे हैं तो उसमें पानी और हवा प्रकाश इसका पर्याप्त मात्रा में फसल को मिलता है, जिसके कारण हमारा उत्पादन बढ़ सकता है। अगर आपको सोयाबीन का उत्पादन अधिक लेना है तो रिज एंड फर्रो मेथड और ब्रॉड बेड फर्रो मेथड का ही उपयोग करें।
1: सर, अंत में हमारे किसान भाइयों को बहनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वे खरीफ मौसम में अच्छी पैदावार और बेहतर आय प्राप्त कर सकें?
0: जी, सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि पर्याप्त मात्रा में नमी होने पर ही बुआई करें। अगर हम पहले बुआई करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका हमें नुकसान होगा, और जब भी हम बीज लाएं तो बीज किसी भी प्रमाणित संस्था से लाएं या ऐसी विश्वसनीय संस्थाओं से ही बीज खरीदें जिसकी जो अनुवांशिक गुणवत्ता, भौतिक शुद्धता और साथ साथ अंकुरण प्रसरण अच्छा हो। अगर किसान भाई अपने घर का बीज बोना चाहते हैं तो उसमें अंकुरण प्रतिशत जरूर देखें
1: जी।
0: अगर 70% से कम अंकुरण आ रहा है तो उस बीज की बुआई नहीं करें। अगर जैसे धान की बात करें तो उसमें कम से कम 80% जर्मिनेशन आना चाहिए, सोयाबीन की बात करें तो कम से कम 70% जर्मिनेशन आना चाहिए। अगर इनसे कम आता है तो हमें उस बीज का उपयोग अपने बुआई के लिए नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारणवश बुआई करना भी पड़े तो आप उसकी बीज दर बढ़ा के करें। उसके बाद जब भी हम बीज उपचार करते हैं या बीज की बुआई करते हैं तो उसको बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम बीज की बुआई करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो कि बीज जनित होती है और कुछ बीमारियां जमीन से होने वाली होती है, तो उनसे हमारी फसल को सुरक्षा, शुरुआती दिनों में फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार करने के तरीके जैसे अभी हमने चर्चा करी कि उसमें फफूंदीनाशक, कीटनाशक और कल्चरों के माध्यम से हम बीज उपचार कर सकते हैं। उसमें आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप 250-250 ग्राम गुड़ लीजिए, गुड़ को 1 लीटर पानी में हल्का सा कुनकुना कीजिए, गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद उसको ठंडा कीजिए और उसको 3 भागों में बांट दीजिए। पहले भाग में फफूंदीनाशक, सेकेंड में कीटनाशक और थर्ड में हम

0: कल्चर के द्वारा मिक्स करके उसके बाद लेयर बाय लेयर उसकी उपचार करके ही बीज को बुआई करें।
1: तो डॉक्टर देवीदास पटेल जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद,
1: नमस्कार।
2: भैया बहना हरों, अब अपन ने सुनी जो भेंट वार्ता, खरीफ फसलों के उन्नत बीज एवं बुआई की विधियां। विशेषज्ञ हते डॉक्टर देवीदास पटेल और इनसे बातचीत करी हती राधा चौरे बहन ने। भैया बहना हरों, देखो का है कि आधुनिक तकनीकें और वैज्ञानिक तरीकन के माध्यम से अपन और अपनी खेती की उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकत है। इके लाने किसानन के लाने डिजिटल लर्निंग एक ऐसी क्रांति है जिमे किसान घरे बैठे फसल प्रबंधन, मौसम की जानकारी और सरकारी योजनाओं को लाभ अपनी भाषा में अपने फोन पे या कंप्यूटर के माध्यम से पा सकत है। किसानन को सशक्त बनावे के लाने सरकार और विभिन्न संस्थाएं कई शानदार डिजिटल प्लेटफॉर्म और पहल शुरू कर चुकी हैं। किसानन को डिजिटल रूप से जागरूक करने के कई सारे ऐप लाए गए हैं। इमें भारत विस्तार ऐप एक ऐसी विशेष कृषि एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे किसान अपनी स्थानीय भाषा में भारतीय एआई के जरिए खेती से जुड़े कोनो भी सवाल को तुरंत जवाब पा सकत है। डिजिटल ग्रीन संस्था 50 से अधिक भाषाओं में किसानन को किसान प्रशिक्षण वीडियो प्रदान करत है, जिसे किसान अपनी समस्याओं को समाधान और अन्य किसानन की सफलताओं से सीखें कर सकत है। एमपी किसान ऐप जो मध्य प्रदेश के स्थानीय किसानन के लाने बहुत ही उपयोगी सुविधा है, जिसके जरिए आप खसरा खतौनी गिरदावरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकत है। इसके अलावा ENAM जो एक राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच है, जो किसानों को डिजिटल रूप से देश की विभिन्न मंडियों और खरीदारों से जोड़त है, ताकि उन्हें उपज को सही दाम मिल पावे। सो जो तो हती जानकारी, चलो अब आपको सुनवाते हैं जो दादरा अलका गुप्ता को गाँव भाव।

भैया बनाहरों चलो अब आपरण को कछु सलाह दे देते हैं। मौसम की परिस्थितियां धान की नर्सरी तैयार करवे किलाने अनुकूल हैं, साथ ही क्यारियां तैयार करवे और अच्छी तरह से सड़ी भई गोबर की खाद और कार्बेंडाइजिन ई को उपयोग करके बीज को उपचारित अपन सुई करवे। नर्सरी में उपचारित उचित नमी बनाए रखवे किलाने, अत्यधिक गर्मी से बचावे ई किलाने पुआल आदि से ढकवे। स्वस्थ पौधा तैयार करवे किलाने कीट और रोगों की नियमित निगरानी सुई करवे। सोयाबीन की बुआई की तैयारी करवे किलाने कृषि आदानों की व्यवस्था करवे। उन्नत और अनुशंसित किस्मन को चयन करके पर्याप्त नमी उपलब्ध हो पे बुआई करवे। आम फल में विकास में परिपक्वता अवस्था में गर्म और शुष्क मौसम के कारण फल झड़पे और मक्खी को प्रकोप हो सकत है, संगे संगे पाउडरी मिल्ड्यू को भी प्रकोप हो सकत है। हल की सिंचाई करके मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। फल मक्खी नियंत्रण के लाने मिथाइल यूजेनॉल के 10 ट्रैप प्रति एकड़ लगावे और आवश्यकता हो पे मेलाथियन 50 ईसी को 2 मिलीलीटर प्रति लीटर में छिड़काव करवे। सो जोती है सलाह। अब आपको कछु पशु सलाह दे देते हैं। हरे चारे के संगे सूखो चारा खनिज मिश्रण सोई अपने पशु को खबावे। पशुशाला की नियमित सफाई करवे और जल की निकासी की उचित व्यवस्था करवे। खुरपका मुंहपका मने MFD और गलघोटू मने SH रोगन के समय पर टीकाकरण करवावे। असामान्य लक्षण दिखवे की स्थिति में पशु चिकित्सक से संपर्क करें और सलाह लेवे। सो इके संगे आज को ग्राम सभा कार्यक्रम हम इतना ही समाप्त करते हैं। स्वीकार करो पूनम बैन की राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: अभिजीत, साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में जिगर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत समीर का था, संगीत आनंद मिलिंद का।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हम तुम फिल्म का गीत, अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में। गीत प्रसून जोशी का है, संगीत जतिन ललित का।

अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में हम तुम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चित्रपट संगीत कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं दौड़ फिल्म का गीत येसुदास और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं महबूब, संगीतकार हैं AR रहमान।

यशुदा सर आशा भोसले की आवाज़ों में दौड़ फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत महबूब का था, संगीत AR रहमान का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम में पेश हैं कुछ चुनिंदा गजलें।

0: दिलराज कौर की आवाज़ में जिगर मुराद आबादी की लिखी गज़ल भी आप सुन रहे थे। संगीत दिलराज कौर का था।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: इफ्तिखार आरिफ की लिखी गजल भी आप सुन रहे थे परवेज मेहंदी की आवाज में।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं नंदी तुग्गल से कवल सियालकोटी की लिखी ये गजल। संगीत नंदी तुग्गल का है।

संगीत सरिता कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं साबिर खान की आवाज में वाली आसी की ये गजल। संगीत आलोकनाथ डे का है।

साबिर खान की आवाज़ में वाली आसी की गज़ल भी आप सुन रहे थे। संगीत आलोकनाथ डे का था। इस गज़ल के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब आप सुनेंगे समाचार संध्या थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति

शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
3: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
4: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
5: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
6: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने

0: कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक ने जैस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। रात्रि के 9 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मनोज सोनी का प्यार भरा नमस्कार।

0: तेरी कसम। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, संगीत आरडी बर्मन का था। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई थी आप सभी की, पटेल नगर मलोट से सुनना चाहते थे डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीतारानी गगनदीप आरजू और गुड्डू जाजोरिया। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से इसी गीत की फरमाइश प्राप्त हुई थी, सुनने वाले थे रोशन लाल दिवांगन, कौशल्या हेमलता और डिंपल दिवांगन। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, अबान अरजान और उनका परिवार। ग्राम दूल्हापुर पीतल नगरी उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर और उनका परिवार। मुंगेली छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा।
1: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
2: सच?
1: हाँ हाँ सच, लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
2: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
1: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
2: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
1: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: मंच गीतों के कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश प्राप्त हुई आप सभी की। अमरावती महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना प्रणय प्रसिद्धि और हीरामड शेंडे। सरावद जिना खरगोन मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज आयुषी रमेश चंद्र शेख मुख सब भाईजान। राजकुमार बोड़ाना और उनका परिवार। आदलपुरा गोगावा से संजय पामनिया, माया कान्हा और कृष्णा। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा वर्षा साईराज और विशाल सपकाल। परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश प्रीतेश और पूरा संघई परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं सागर फिल्म का गीत, आशा भोसले और SP पाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। गीत जावेद अख्तर का है, संगीत RD बर्मन का।

मन चाहे गीतों के कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत आर डी बर्मन का है, फिल्म का नाम है बरसात की एक रात। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई आप सभी की आर्यनगर कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मॉरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन आरुषि ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल। ग्राम दुलापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान इसरान और नरगिस खातून। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक और आर्यन वर्मा। हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म बरसात की एक रात से ये गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में बरसात की एक रात फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इसी गीत की फरमाइश बंडा से हमें प्राप्त हुई थी। विवेक सिंघई, ऋतिक सैनी, राजेश यादव, धर्मेंद्र ठाकुर, उदल सिंह लोधी, अंकुर कटारे और पुष्पेंद्र पटेल ने ये फरमाइश भेजी थी। आइए अब सुनते हैं मनचाहे गीत कार्यक्रम की फरमाइश। आप सबकी मजनू कटिल्ला से सुनना चाहते थे कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और उनका परिवार। सतना एमपी से फरमाइश प्राप्त हुई उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक की। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित, हैप्पी, आनंद, पीयूष और उनका परिवार। गांव उकाला, जिला अंबाला, हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और उनका परिवार। दिल्ली से रेशमा अंसानी, शकीला, रेहान और उनका परिवार। वीरमगाम सिटी से उस्मान वोहरा, शहनाज और उनका परिवार। राजकोट से प्रमीला जाटव और अजीता जाटव। कर्माचौक लोहारी डीह छत्तीसगढ़ से यशवंत साहू, रमेशिया, हर्ष और अंश साहू। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या और उनका परिवार। सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी और पूनम कुमारी शर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं आशा भोसले और मीनू की आवाज़ों में SH बिहारी का लिखा ये गीत। संगीत OP नैयर का है। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी।

0: ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मीनू की आवाजों में ये गीत। इस गीत के साथ ही मनचाही गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 9:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
1: जरा सुनिए कैसी बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
1: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: जी हाँ, नीतू सिंह की अदाकारी और नीतू सिंह को चाहने वाले आज भी उन्हें पर्दे पर देखने की चाहत रखते हैं। नीतू सिंह ने अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीता और ये सिलसिला उन्होंने अपने बचपन से ही शुरू कर दिया था।
1: बच्चे मन के।

कलियां फिल्म में नीतू सिंह ने डबल रोल किया था और तब उनकी उम्र महज 8 साल की थी। बेबी सोनिया के नाम से उन्होंने अपने अभिनय की ये पारी शुरू की। उस समय पहली फिल्म जो थी वो थी सूरज 1966 में।

नीतू सिंह का जन्म हुआ 8 जुलाई 1958 को दिल्ली के एक सिख परिवार में, पिता दर्शन सिंह और माँ राजी कौर। बाद में ये बंबई शिफ्ट हो गए, जो आज मुंबई कहलाती है। यहाँ पैडर रोड जैसे पॉश इलाके में रहने लगे। नीतू का दाखिला भी यहीं के एक स्कूल, हिल ग्रेंज हाई स्कूल में करा दिया गया। और फिर कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि एक दिन नीतू सिंह को फिल्म सूरज में बाल कलाकार के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर तो ये सिलसिला शुरू हुआ, 10 लाख, दो कलियां, वारिस और पवित्र पापी। इन फिल्मों में भी नीतू ने बेबी सोनिया के नाम से अभिनय किया। अब बात 1973 की, जबकि पहली बार बेबी सोनिया को बतौर अभिनेत्री फिल्म में साइन किया गया और अब बेबी सोनिया बन गई नीतू सिंह और फिल्म थी रिक्शावाला। एक नायिका के रूप में नीतू सिंह का यह सफर शुरू हुआ 1973 से 1983 तक चला और इस दौरान नीतू सिंह ने लगभग 55 फिल्मों में काम किया। अभिनय की शुरुआत में नीतू सिंह की फिल्म रिक्शावाला ने शायद उनकी उतनी मदद नहीं की जितना कि महत्व फिल्म यादों की बारात का था। धर्मेंद्र, जीनत अमान, विजय अरोरा जैसे कलाकारों के साथ इस फिल्म में नीतू सिंह का रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन इस फिल्म में उनके हिस्से आया एक गाना जिसने दर्शकों के दिलों तक पहुंचा दिया नीतू सिंह।

नीतू सिंह ने अपने समय के लगभग सभी नायकों के साथ बढ़ चढ़ कर काम किया। रणधीर कपूर के साथ हीरालाल पन्नालाल, भला मानुस, कसम वादे,

राजेश खन्ना के साथ महाचोर, चक्रव्यूह और पंजाबी फिल्म सवा लाख से एक लड़ाऊं, जितेंद्र के साथ धर्मवीर, प्रियतमा, चोरनी, जानी दुश्मन,

विनोद खन्ना के साथ सेवक, परवरिश, महाबदमाश, युवराज, राजमहल, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अब क्या होगा, काला पत्थर। नीतू सिंह ने अपने पूरे फिल्मी करियर में अब तक सबसे ज्यादा फिल्में की ऋषि कपूर के साथ, और 1980 में जबकि नीतू सिंह की उम्र सिर्फ 21 साल की थी, तब उन्होंने ऋषि कपूर के साथ विवाह कर

ऋषि कपूर के साथ नीतू सिंह की फिल्मों ने हर तरफ वाहवाही बटोरी। यही नहीं, दोनों की फिल्मों का संगीत भी सुपरहिट रहा। कभी कभी अमर अकबर एंथनी, दुनिया मेरी जेब में, जिंदा दिल, दूसरा आदमी, अनजाने में, झूठा कहीं का,

ऋषि कपूर के साथ विवाह के बाद नीतू सिंह ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान परिवार पर लगा दिया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह, जो कि शादी के बाद नीतू कपूर कहलाने लगी, के बेटे हैं रणबीर कपूर और बेटी है रिधिमा। रिधिमा बड़ी है, उनका विवाह हो चुका है,

दिल्ली के एक इंडस्ट्रियलिस्ट भरत साहनी के साथ, और रणबीर कपूर को तो आप जानते ही हैं। नीतू सिंह ने लगभग 26 साल बाद अपने अभिनय की दूसरी पारी शुरू की, और वो भी ऋषि कपूर के साथ ही, फिल्म लव आजकल से।

अब भी नीतू सिंह फिल्मों में सक्रिय हैं। दूसरी पारी की उनकी फिल्में हैं लव आजकल, दो दूनी चार, जब तक है जान और बेशरम। नीतू सिंह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों, यही विविध भारती की कामना।

0: योग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें

0: प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्रेम कभी भी अग्नि परीक्षा नहीं बनना चाहिए, ना ही उसे समर्पण के प्रमाण देने पड़े कभी। क्यों है ना? क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा में दो नहीं रहते। हाँ, प्रेम की पराकाष्ठा में दो नहीं रहते, केवल एक प्रवाह रह जाता है बस।
1: तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से

जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल झुके, जहाँ पलके तेरी खुले, जहाँ जुल्फे तेरी।

कठिन नहीं होता, हम उसे कठिन बना देते हैं। हम सोचते हैं कि प्रेम बदल गया, प्रेम करने वाला बदल गया, पर शायद प्रेम नहीं बदलता। उसके साथ जुड़ी अपेक्षाएं बदल जाती हैं, उसके साथ जुड़ी उम्मीदें बदल जाती हैं।

0: कभी कभी हमारे भीतर जो चलता है वो शब्दों में कम और खामोशी में ज्यादा होता है। हमारा मन बहुत परतों में बटा होता है। ऊपर ऊपर हंसते हुए भीतर कहीं एक कोना ऐसा होता है जहां हम अपने असली रूप में होते हैं, थके हुए से, चुप चुप और कभी कभी बेहद अकेले भी।
1: कभी

इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। कभी कभी जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय एकांत के। हाँ, बस चार दीवारें, एक खिड़की, छोटा सा रोशनदान, हल्की सी रोशनी और भीतर की आवाजें। हाँ, भीतर की आवाजें अच्छी लगती हैं तब, क्योंकि वहां कोई अभिनय नहीं होता, कोई भूमिका निभानी नहीं पड़ती। बस अपने भीतर के उन हिस्सों को हम सुन सकते हैं जिन्हें हमने वर्षों से टाल रखा होता है। तब आप खुद से भाग नहीं रहे होते, बस अपने भीतर लौट रहे होते।

के बाद शोर वाला नहीं सुकून वाला प्यार चाहिए होता है ना? ऐसा प्यार जो मुश्किलों से भागे नहीं, ऐसा प्यार जो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में मौजूद हो, ऐसा प्यार जो आत्मा को थकाए नहीं, ऐसा प्यार जो हमको रुलाए नहीं बेवजह, ऐसा प्यार जो अच्छा नहीं बल्कि सही हो, हाँ बस सही हो।

कहते हैं रिश्ते किसी तूफान की तरह नहीं टूटते, ज्यादातर गिरावटें बिना आवाज के होती हैं। हम उम्मीदों की टोकरी अपने सर पर लिए घूमते हैं और हर उम्मीद हर रोज किसी तारे की तरह टूटकर बिखर जाती है, और साथ ही बिखर जाती है हमारी जिंदगी भी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।